0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: हश हश हश, पापा स्लीपिंग।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे भी धीमा नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। बजट पेश होने से एक दिन पहले कुगान पापा ने प्रस्ताव दिया है कि उच्च आय वालों पर टैक्स बढ़ाकर ईंधन की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है। हालांकि आलोचकों का सवाल है कि क्या ऐसा करने से मॉरिशस में विदेशी निवेशकों और पेशेवरों का आकर्षण कम हो सकता है या नहीं। बजट को लेकर मॉरिशस में बहस छिड़ी है, जहां जूनियर मंत्री कुगान पाकापेन सामाजिक न्याय के लिए उच्च वेतन वालों पर टैक्स बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पैट्रिक बेल्को इसका विरोध कर रहे हैं। बेल्को का तर्क है कि कर बढ़ाने से ये लोग देश से बाहर जा सकते हैं। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अमीरों को करों में छूट दी जाए यदि वे उस राशि को सामाजिक आवास परियोजनाओं में निवेश करें। बजट पेश होने से ठीक पहले जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ हुई पूर्व बजट चर्चाओं के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि पिछली बजट घोषणाएं विफल रही हैं, इसलिए अब अर्थव्यवस्था को सुधारने और सही दिशा में ले जाने के लिए नए और ठोस कदमों की आवश्यकता है। चीनी उद्योग का लक्ष्य 2029 तक उत्पादन बढ़ाकर 2,50,000 टन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MCIA ने 210 मिलियन रुपये के तत्काल निवेश की मांग की है, ताकि सेक्टर की उत्पादकता को सही समय पर बढ़ावा दिया जा सके। जलाशयों के गिरते स्तर के कारण वाकाक्यूपी और मुका सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। अब निवासियों को दिन में केवल 5 से 6 घंटे ही पानी मिल रहा है। इस स्थिति के बीच लोग नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने और भविष्य की संभावित लंबी कटौती के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ है। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलेगा, जिसके बदले उसे बिना किसी रोक टोक के तेल निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जो बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा था वो उत्तर पश्चिम की ओर दूर होता जा रहा है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व और सेंट्रल प्रांतों पर आज सुबह कुछ हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा, फिर भी दोपहर बाद को उत्तर पश्चिम में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात को आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊँची लहरें उठेंगी। आज सुबह और दोपहर बाद को दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
2: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, हमारा प्यार भरा नमस्कार आदाब आप सभी सुनने वालों को। आज है गुरुवार और तारीख है 18 जून महीने में है और साल है 2026। आप सभी सुनने वालों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो चलिए श्रोताओ, गुरुवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, हमारी यही कामना है। और हम आपसे यही कहेंगे कि मुस्कान के दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक अच्छी सोच पूरे दिन को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। तो चलिए, इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और ये कार्यक्रम आप जो है आचार्य सकलानी जी से सुन पाएंगे।
3: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।

अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम इस संसार का जो रोग है, जिसको भव रोग शास्त्रीय भाषा में कहा है, उस भव रोग की जो रामबाण दवा है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। श्रोताओं, उदर के समस्त दूषित मल को निकालने के लिए वैद्य लोग अनेक प्रकार के चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसके सेवन से उदर निर्विकार हो जाता है और सारी व्याधियों की जड़ उदर विकार ही तो है ना। जहाँ उदर विकार नष्ट हुआ, वहीं तमाम रोगों की जड़ कट गई। इसी प्रकार समस्त व्याधि का समूल नाश करने वाला एकमात्र रामबाण नुक्सा है, वो है और पंच सकार। इसमें भी पांच चीज़ें हैं श्रोताओं, और पांचों से एक बढ़कर के लाभ देने वाली चीज़ें हैं। इनमें से किसी एक का अलग सेवन करने से भी सब विकार नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष इन पांचों का सेवन करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वो पांच चीज़ क्या हैं श्रोताओं? पहला है सहिष्णुता, दूसरा है सेवा, तीसरा है सम्मान दान, चौथा है स्वार्थ त्याग और पांचवा है समता। तो आज हम सहिष्णुता पर चर्चा करेंगे। इन सब पर एक एक करके इन पर विचार करना होगा। सहिष्णुता श्रोताओं, सहिष्णुता का जो अर्थ है, तितीक्षा या सहनशीलता, सहनशीलता वास्तव में, और इसके भी चार मुख्य अंग हैं, जैसे द्वंद सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता। इन सब पर क्रम से और हम आज विचार करते हैं

सुख और दुख जो द्वंद्व सहिष्णुता है उसके विषय में ऋषि लोग कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मान अपमान शीत उष्ण आदि परस्पर विरोधी द्वंद्व में हर्ष और विषाद न होने और न होकर चित्त का सर्वथा निर्विकार रहना ही द्वंद्व सहिष्णुता है। इस द्वंद्व सहिष्णुता का फल अमृतत्व या मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो नित्यांस्तांस्ति तीक्षस्व भारत यम हि न व्यतथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, शीत उष्ण और सुख दुख दोनों और सुख दुख को देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग क्षण भंगुर और अनित्य हैं। हे अर्जुन, तू इनको सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये द्वंद्व व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। अब ये प्रश्न होता है श्रोताओं कि द्वंद्व सहिष्णुता प्राप्त कैसे हो। इसका पहला साधन तो और उस पर विचार करना ही और सांसारिक हानि लाभ सुख दुख जो कुछ भी होता है वो सब हमारे श्रोताओं पूर्व कर्म का फल है और कर्म फल भोग तो हर हालत में करना ही पड़ता है। संचित और क्रियमाण कर्म का तो नाश भी हो जाता है परंतु प्रारब्ध का नाश स्वरूप से नहीं हो सकता। अवश्य ही ज्ञानी पुरुष में कर्ता और भोक्तापन का अहंकार न हो करने से और प्रारब्ध कर्म के अनुसार फल होने पर भी उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी स्वरूप से प्रारब्ध का नाश प्रायः नहीं होता है श्रोताओं, है ना। नियंता भगवान के द्वारा फल देने के लिए नियत कर्म किए हुए कर्म का फल जिनके और जिनसे जन्म हुआ है मृत्यु काल तक त्रिविध भोग करना ही पड़ेगा। प्रारब्ध भोग से हमारे कर्म क्षय होते हैं और जितना ही कर्मों का जंजाल कटता है उतना ही हम परमात्मा के समीप पहुँचते हैं। कम से कम कर्मों का एक बड़ा भारी ऋण सिर से उतर ही जाता है, इसलिए इनको आनंद पूर्वक सहन करना चाहिए श्रोताओं। एक बात और ये याद रखने की है कि सुख की प्राप्ति में हर्ष होना और दुख की प्राप्ति में विषाद से जलना दोनों ही असहिष्णुता के दो प्रकार हैं श्रोताओं। कई लोग इस असहिष्णुता मूलक सुख को ही आनंद मानते हैं परंतु ये उनकी भूल है। तत्वज्ञ पुरुष ने असहिष्णुता मूलक सुख और दुख दोनों को ही अपने और परिणाम में दुख रूप होने से दुख ही बतलाया है, इसलिए सुख और दुख दोनों ही सहिष्णुता और होनी चाहिए, दोनों में ही और विकारहीन स्थिति होनी चाहिए। द्वंद्व सहिष्णुता का दूसरा साधन है श्रोताओं सुख दुख आदि के स्वरूप का ज्ञान। विचार करने पर पता लगता है श्रोताओं कि सुख दुख आदि वास्तव में किसी वस्तु में नहीं है, इनका स्रोत वास्तव में हमारा मन में ही है। जहाँ प्रतिकूलता या अभाव का अनुभव है वहीं दुख है और जहाँ अनुकूलता या अभाव का अनुभव नहीं है वहीं तो सुख है। अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो आधार है वो है राग और द्वेष। जिस वस्तु में राग है उस वस्तु की प्राप्ति और जिस वस्तु में द्वेष है उसका विनाश या अभाव हमें और अनुकूलता

0: दिखती है। इसी प्रकार द्वेष वाली वस्तु की प्राप्ति में और राग वाली वस्तु के विनाश या अभाव में प्रतिकूलता प्रतीत होती है। राग और द्वेष सदा सब वस्तुओं में एक से नहीं रहते हैं, इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक सी नहीं रहती है। आज एक मनुष्य में किसी स्वार्थ के संबंध में राग है, इससे उसका मिलन अनुकूल और बिछोह प्रतिकूल प्रतीत होता है। संभव है कि कल स्वार्थ में कोई बाधा उपस्थित होने पर उसमें द्वेष हो जाए, तब उसी का मिलन प्रतिकूल और बिछोह अनुकूल प्रतीत होता है। कहीं कहीं तो उसकी मृत्यु तक में अनुकूलता प्रतीत होती है। श्रोताओं, जहाँ प्रतिकूलता है वहीं अनुकूलता का अभाव है, और इस अनुकूलता के अभाव का चित्त में जो एक अनुभव होता है वो बड़ा ही उद्वेगकारी और जलन उत्पन्न करने वाला है। इस उद्वेग और ताप से पूर्ण अभाव का नाम ही तो दुख है श्रोताओं। परंतु सोचने पर यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि हमारे कल्पित अनुकूलता प्रतिकूलता ही इस प्रकार के सुख दुख का कारण है, और इस अनुकूलता प्रतिकूलता का आधार राग द्वेष है। राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान जनित अहंकार से या अज्ञान से ही होती है। विवेक से, विचार से इस अज्ञान का पर्दा फाड़ डालने पर राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ राग द्वेष निकले वहीं सुख दुख का जो स्रोत है वो अपने आप ही सूख जाता है। फिर किसी भी स्थिति में न सुख होता है और न दुख होता है, फिर सुख दुख रहित आनंद में ही और सब भोगे भोग जो है और वो भोगे जाते हैं। और श्रोताओं, जो तीसरा साधन है ये विचार करना है कि कर्म फल भोग का जो कुछ और विधान हुआ है उसके नियामक हमारे परम सुहृद परम प्रियतम मंगलमय भगवान ही हैं, और उनका किया हुआ कोई भी विधान हमारे अमंगल के लिए नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से श्रोताओं, अमंगलमय में अमंगल को स्थान तो है ही नहीं, फिर भी वे तो हमारे परम आत्मीय हैं, और उनके द्वारा तो हमारा अमंगल सर्वथा और असंभव है। हमने मंगल का आश्रय ले रखा है, इसी से उनके और सुहृद स्वरूप को नहीं समझते हैं, और इसी से उनके विधान में हमें हर्ष शोक होता है, हमारा उनमें प्रेम नहीं है। इसी से उस प्रियतम के किए हुए मंगलमय विधान में अमंगल देख करके और हम अपने मन को मैला करने लग जाते हैं। सुख दुख की ये उनकी ही तो लीला है श्रोताओं, हमारे मंगल के लिए अनादिकाल से ये अनवरत चलता आ रहा है ये विधान श्रोताओं, और चलता ही रहेगा, और इस लीला का कभी भी और विराम नहीं हो सकेगा। श्रोताओं, आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6:18 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले मोंडेजिया, पायुट तथा आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है कांडोस के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में है वाक्वा रोड, सोलफेरिनो

0: वो कत्ते के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को एपास बेकासिन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 18 जून 2026 को दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है सैड हुसैन रोड फेनिक्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एम्पेरियल गार्डन, कॉन्डोस लेजर पार्क एवेन्यू, फेनिक्स हाइट्स अपार्टमेंट, हिलक्रेस्ट अपार्टमेंट, फेनिक्स रेजिडेंस अपार्टमेंट, मार्सलमान सोसाइटी पार्कलैन, जे एन जे ऑडिटोरियम, पेट कॉन्सर्न, जी बी बी एस, ऑटो सिटी कार शोरूम, प्रीमियम केयर क्लिनिक, जैसन नेटवर्क लिमिटेड, सुकोटा, फेनिसिया, कावेंडिश इंस्टीट्यूट और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 21 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच। और अंत में है वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है हॉलीवुड नंबर 1, रूट 15 कॉटन नंबर 2 के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, रूट दे वेगू के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में है रूट लामारी, रूट बेगू, रूट बोनफे, शमे रिजर्वोर, डूडी लेन, शमे ला सोस, मुटू लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 28 जून 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रखेंगे और हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में चलिए एक विशेष कार्यक्रम हम सुन सकेंगे गहलोत राजपूत सभा की तरफ से।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। श्रोताओं, पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मोगल का सादर से प्रेम नमस्ते और गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत सत्यार्थ प्रकाश संबंधित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विषय, ईश्वर एक है, नाम अनेक, प्रथम समुलास। श्रोताओं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हमें हमारी स्वस्थ परंपराओं से परिचित कराने वाला, अंधविश्वासों से मुक्त कराने वाला, ज्ञान चक्षु खोलने वाला, हमारी सोई चेतना को जगाने वाला और केवल हमारे धर्म ही नहीं अपितु विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की जानकारी देने वाला, मानव धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करने वाला वास्तविक अर्थों में एक अद्वितीय ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि महर्षि ने अपने समस्त ग्रंथों में उन्हीं सत्य सिद्धांतों तथा मान्यताओं का सप्रमाण प्रतिपादन किया है जो वेद आदि सत्य शास्त्रों के अनुकूल है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास में महर्षि ने ईश्वर के स्वरूप और उसके विविध नामों का विस्तार से वर्णन किया है। उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि ईश्वर निराकार, सर्व व्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है। इसी संदर्भ में उन्होंने वेदों में आए ईश्वर के अनेक नामों की व्याख्या की। महर्षि लिखते हैं कि ईश्वर के नाम केवल एक या दो नहीं है अपितु अनंत बताया, क्योंकि

उसके गुण भी अनंत हैं। प्रत्येक नाम ईश्वर के किसी विशेष गुण, शक्ति या कार्य को सूचित करता है। प्रमुख नामों की व्याख्या, ओमकार यह सबसे महान नाम है जिसमें त्रैलोक्य के तीन अक्षर अ उ म मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के गुणों का बोध कराते हैं। ईश्वर जिसका अर्थ है ईश, शासक जो संपूर्ण जगत का नियंता है। भगवान जिसमें भ से ऐश्वर्य, ग से गति, ज्ञान और वान से संपन्नता का बोध होता है। परमेश्वर जो सबका परम स्वामी है, अल्लाह, खुदा आदि महर्षि जी स्वीकार करते हैं कि अन्य भाषाओं के भी नाम मान्य हैं। यदि उनका अर्थ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी सत्ता से है, अदिति, हिरण्यगर्भ, अग्नि, मित्र, वरुण, इंद्र, प्रजापति आदि ऋग्वेदिक नाम, इनका अर्थ वे प्राकृतिक तत्वों से नहीं जोड़ते अपितु ईश्वर के विशेष गुणों से जोड़ते हैं। जैसे अग्नि जो सबको जानता है, प्रकाशमान है, वरुण जो सबको आच्छादित करता है, मित्र जो सबका मित्र है, इंद्र जो अत्यंत शक्तिशाली है। प्रथम समुलास में यह बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य का साध्य या चरम लक्ष्य है। वह ईश्वर एक है, अनेक नहीं। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव इतने अधिक हैं कि हम उनके आधार पर उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, पर वास्तव में वे सब नाम एक ही ईश्वर के हैं। जैसे एक ही व्यक्ति के कई नाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध और पद अनुसार हो जाते हैं। पिताजी, चाचाजी, नानाजी आदि कई संबोधनों से संबोधित होता है, और वही व्यक्ति धंधे के अनुसार अध्यापक, वकील आदि संबोधनों से संबोधित होता है, परंतु उसका मुख्य नाम एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार संसार की रचना करने वाला होने से ईश्वर को ब्रह्मा, सब में व्यापक होने और सबकी पालन करने वाला होने से उसी को विष्णु, कल्याण करने वाला होने से उसी को शिव, माता पिता आदि देवों का भी देव होने से महादेव कहते हैं। पर ध्यान रहे कि विभिन्न नामों से पुकारने जाने पर भी ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम ही है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए पवित्र वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इस मंत्र का मूल स्रोत ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 164 मंत्र 46 के एक प्रसिद्ध मंत्र का हिस्सा है। अर्थात यह सार्वभौमिक सत्य है कि परम सत्य ईश्वर ही केवल एक ही है। अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों या विचारों द्वारा दिए गए ईश्वर के नाम और रूप केवल उस एक सत्य तक पहुंचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। यह विचार किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ को नकारता है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व की भावना को सिखाता है। सत्य या ईश्वर एक ही है श्रोताओं, जिसे ज्ञानी और विद्वान लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसीलिए कहा, एक ही साधे सब सधे, उस ईश्वर को सिद्ध कर लो, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। उस वृक्ष की जड़ को सींचो, उसमें पानी डालो, छाया, पत्ते, फल, फूल सब मिल जाएंगी। संसार एक पीपल का वृक्ष है, सामान्य वृक्ष की जड़ नीचे है और शाखाएं ऊपर, परंतु संसार रूपी वृक्ष के फल, फूल, पत्ता सारी नीचे की ओर फैले हैं। इस वृक्ष का स्वामी कोई अनोखा ही पुरुष है। निष्कर्षः, प्रथम समुलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक सर्वमान्य सत्य का प्रतिपादन किया कि ईश्वर एक है, नाम अनेक। एक ही ईश्वर के नाम पर चल रहे बहु देवतावाद, उससे उत्पन्न मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव, कलह, क्लेश एवं पाखंडों से बचाना और एकमात्र ओम के जप को अपनाना। श्रोताओं, आपकी धार्मिक मान्यताएं जो

0: भी हो, एक बार इस ग्रंथ सत्यार प्रकाश को पढ़ें और फिर आप अपने मार्ग स्वयं निर्धारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं ध्यान के लिए। धन्यवाद। ओम शांतिश शांतिश शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, गुरुवार 18 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बजट पेश होने से एक दिन पहले कुगान महापैर ने प्रस्ताव दिया है कि उच्च आय वालों पर टैक्स बढ़ाकर ईंधन की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है। बजट को लेकर मॉरिशस में बहस छिड़ी है, जहां जूनियर मंत्री कुगान महापैन सामाजिक न्याय के लिए उच्च वेतन वालों पर टैक्स बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पैट्रिक बेल्को इसका विरोध कर रहे हैं। बेल्को का तर्क है कि कर बढ़ाने से ये लोग देश से बाहर जा सकते हैं। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अमीरों को करों में छूट दी जाए यदि वे उस राशि को सामाजिक आवास परियोजनाओं में निवेश करें। बजट पेश होने से ठीक पहले जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ हुई पूर्व बजट चर्चाओं के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि पिछली बजट घोषणाएं विफल रही हैं, इसलिए अब अर्थव्यवस्था को सुधारने और सही दिशा में ले जाने के लिए नए और ठोस कदमों की आवश्यकता है। चीनी उद्योग का लक्ष्य 2029 तक उत्पादन बढ़ाकर 2,50,000 टन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MCIA ने 210 मिलियन रुपए के तत्काल निवेश की मांग की है, ताकि सेक्टर की उत्पादकता को सही समय पर बढ़ावा दिया जा सके। जलाशयों के गिरते स्तर के कारण वाक्वा क्यूपी परमुका सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। अब निवासियों को दिन में केवल 5 से 6 घंटे की पानी मिल रहा है। और विदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार न बनाने और सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने पर सहमत हुआ है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा। ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। क्या अधिक कमाने वालों को आबादी को राहत देने के लिए अधिक योगदान देना चाहिए? बजट से एक दिन पहले कुगान महापैन ने इस बहस को फिर से शुरू कर दिया है। फेसबुक पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने ईंधन के हर लीटर पर 5 रुपये की कमी के वित्त पोषण के लिए बहुत अधिक वेतन पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उनका तर्क सरल है, आज राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा उन करों से आता है जो हर कोई चुकाता है, जैसा कि VAT या पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। उनके अनुसार ये प्रणाली परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर बहुत अधिक बोझ डालती है। इसलिए उनका मानना है कि अधिक आय वाले लोगों से बड़ा योगदान मांगना आवश्यक है। लेकिन ये प्रस्ताव एक और सवाल भी उठाता है, क्या उच्च आय पर कर वृद्धि निवेशकों और पेशेवरों के लिए मॉरिशस के आकर्षण को प्रभावित कर सकती है? इसका जवाब आधे वाले सुमेरा अकबर अली के साथ।
2: पेट्रोली सामानों की कीमतों को घटाने के लिए क्या उच्च आमदनी वालों का टैक्स बढ़ाना मुनासिब है? बजट की पेशकश के एक दिन पहले कुगान पगापेन ने एक प्रस्ताव रखा। उनका सुझाव है कि जिन लोगों को बड़ी तनख्वाह मिलती है उनके लिए टैक्स में इजाफा लाना चाहिए, मकसद पेट्रोल और डीजल के हर एक लीटर को 5 रुपये से घटाना। दरअसल ख्याल ये है कि जिन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं उनके योगदान की मांग करना, ताकि पूरे आवाम पर दबाव कम हो। कुगान पगापेन समझाते हैं कि मौजूदा प्रणाली अप्रत्यक्ष टैक्स पर

0: बहुत मबनी हैं। ये वो टैक्स हैं जो हर कोई चुकाता है, उनका वेतन जितना भी हो, मिसाल के तौर पर पैदावारों और सेवाओं पर वैट की अदायगी। जूनियर मिनिस्टर के मुताबिक ये प्रणाली ना इंसाफी दर्शाती है, क्योंकि ये कम आमदनी और औसतन आमदनी वालों पर भारी पड़ता है। कुकानपागापेन ने मॉरिशस की तुलना दूसरे देशों से की। उनके मुताबिक मॉरिशस एक ऐसा मुल्क है जहाँ बड़ी तनख्वाहों पर टैक्स कम है।
1: क्या मॉरिशस में कर की दर बढ़ाई जानी चाहिए? बजट के लिए सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर कुकानपागापेन का यही प्रस्ताव है। पिछले सोमवार को ही रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव के सांसद ने इसे राजकोषीय न्याय यानी फिस्कल जस्टिस का नाम देते हुए इस उपाय का बचाव किया। उनके अनुसार ये सामाजिक एकजुटता की कीमत है। हालांकि पैट्रिक बिल्को ने साफ तौर पर इसे नकार दिया है। ओनावा मोरिस के नेता और बुबासेर उसील नगर पालिका के काउंसिलर का मानना है कि ऐसा निर्णय भारी वेतन पाने वालों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया है कि अमीरों को कम टैक्स देने के बदले सामाजिक आवास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक मेकानिज्म बनाया जाए। उनको सुनते हैं उनसे बात की प्रणव बिहारी ने।
0: जब तनख्वाह बहुत होती है तो टैक्स भी ज्यादा होता है, लेकिन कर्मचारियों के योगदान के हिसाब से उन्हें बड़ी तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर उनके लिए टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जाए तो ये लोग मॉरिशस को छोड़कर जाएंगे। मॉरिशस में अच्छी काबिलियतों को आकर्षित नहीं कर पाएंगी, बल्कि दूसरे प्रस्ताव हो सकते हैं, जैसे टैक्स की एक बड़ी रकम चुकाने के बजाय कर्मचारी आवास में निवेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रईस लोग कम आमदनी वालों के लिए रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा 2026-2027 का बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले श्रमिक संघों ने अपना पक्ष रखा है। जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे का कहना है कि जब ट्रेड यूनियन नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता खुद सरकार के प्रमुख करें, तो उसके पीछे ठोस कारण थे। उनके अनुसार पिछले बजट में घोषित कई उपाय अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे हैं और आज अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर वापस लाना अत्यंत आवश्यक है। अश्विन गुदे को सुनते हैं, जिनसे बात की अंजलि सिरतन फुलचंद ने। विवरण सुमित अकबर अरिका है।
2: Nous tenons une raison très solide quand nous tient insister que c'est le Premier ministre qui est également le ministre des Finances.
0: हम बिल्कुल सही थे ये कहकर कि प्रधान एवं वित्त मंत्री को ही बजट पूर्व सलाह मशवरों का सत्र संचालित करना चाहिए था। पिछले बजट में जिन कदमों का ऐलान किया गया था उन्हें अमल में नहीं लाया गया। आज कर्मचारी जिंदगी की महंगाई की वजह से घुट रहे हैं, कारखाने और उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को भी मुश्किलें हो रही है। अर्थनीति को अच्छी राह पर लाना चाहिए। इसके अलावा जुर्म और ड्रग नोश बढ़ रहे हैं। बजट में नागरिकों की हिफाजत के लिए कदमों का प्रावधान होना चाहिए।
2: Tout ça peut augmenter, donc l'important qu'à travers le budget, capable amène la sérénité et amène plus de protection pour les citoyens quand on a une situation la drogue.
1: मॉरिशस लेबर कांग्रेस के अध्यक्ष हनीफ पिरन का मानना है कि सरकार को कीमतों पर नियंत्रण बढ़ाने, रुपए को स्थिर करने के उपाय करने और मॉरिशस वासियों के बोझ को कम करने के लिए सामाजिक सहायता को मजबूत करने की आवश्यकता है। उनको सुनते हैं।
3: Le mouvement syndical dans son ensemble et ne soumet pas une proposition pré-budgétaire au gouvernement.
0: श्रमिक संघों ने सरकार को कुछ प्रस्ताव दिए हैं। हमें लगता है कि जिंदगी की महंगाई इतनी बढ़ गई है और दाम इतने बढ़ गए हैं कि मुर्शनों को मुद्रा स्फीति डर का असर झेलना पड़ रहा है।
3: Les Mauriciens en général sont obligés de faire face à taux d'inflation et il arriverait pour que le gouvernement vienne avec un contrôle des prix. Quand les biens fixés bannent certaines commodités qui sont plus servies par la grande partie de la population.
0: वक्त आ गया है कि सरकार दामों पर काबू रखे। अवाम का ज्यादातर हिस्सा जिन सामानों का इस्तेमाल करता है उनका फिक्स्ड रेट होना चाहिए। रुपए मुद्रा में स्थिरता लानी जरूरी है।
1: चीनी क्षेत्र की भी इस बजट से अपनी कुछ उम्मीदें हैं, जहां कृषि उद्योग सदन ने इस वर्ष 2,25,000

0: हज़ार टन कटनी का अनुमान लगाया है। वहीं मोश स्किन इंडस्ट्री अथॉरिटी MCIA कम बारिश के बावजूद अधिक आशावादी है। हालांकि मुख्य लक्ष्य 2029 तक 2,50,000 टन उत्पादन तक पहुंचना है। इसके लिए अभी से निवेश शुरू करना होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए MCIA को कम से कम 210 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। प्रणव बिहारी, सुमित अकबर अली।
1: बजट 2026-2027 के लिए गन्ना उद्योग के अधिकारियों ने अपनी सबसे बड़ी फिनेंसिंग की मांग कन्वर्शन मशीनों के लिए की है। 1,500 हेक्टेयर जमीनों को कन्वर्ट किया जाएगा, जिनसे 3 सालों में अतिरिक्त 12,000 टन शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। MCIA पानी के मसले को भी सुलझाना चाहती है। डॉक्टर सुमन सिरतन के मुताबिक इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जा सकता है। हमने बजट की मांग की ताकि हम पायलट बेसिस पर एक परियोजना शुरू कर सकें। समुद्र में जाने से पहले ही इस जल को प्राप्त करके खेतों में इस्तेमाल करेंगे। MCIA की उम्मीद है कि बजट में एक दूसरी रकम का प्रावधान हो, जिससे कृषि सेक्टर 20% रिन्यूएबल ऊर्जा का योगदान दे सके।
0: अन्य खबरों में जलाशयों का गिरता स्तर अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज से मऊ वाक्वा जलाशय से आपूर्ति पाने वाले देश के कई क्षेत्रों में पानी वितरण का नया समय लागू कर दिया गया है। कुछ इलाकों में अब पानी दिन में केवल 5 से 6 घंटे ही उपलब्ध हैं। वाक्वा, क्यूपिप, काट्रोबोन, बोबासे, रोज हिल, मोका, सेंट पियर और कई अन्य इलाके इससे प्रभावित हैं। निवासी इस नई वास्तविकता के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? क्या उन्होंने संभावित लंबी अवधि की पाबंदियों का सामना करने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली है? हमारी सहयोगी जेनी यलापा ने कुछ निवासियों की प्रतिक्रियाएं ली, उनको सुनते हैं।
2: L'air est coupé là, mais écoute-moi tout le temps de le couper. Mais alors, moi fini, les vieux grands matins, moi fini faire tout ce que moi n'a pas fait. L'après-midi, comment de le couler, moi cuire, moi manger.
3: Je me désigne à temps, écoute-moi, mais moi pas trop bien un problème pour moi. Si nous qu'on j'ai un affaire, nous capable à faute avec ça.
4: Bon, et vous allez bien, t'inquiète, vous allez bien.
5: Quand moi fini, après c'est fini, après moi nettoyer la casa.
6: Mais moi tout seul, moi n'a pas de drôme, moi n'a pas de CEO, moi n'a pas tout ça là. Moi connais pas arrêter ce parquet. Au final, ramasse-moi de l'eau, on prend toutes mes précautions.
7: Parler de l'arrêter, pas qu'à baigner, bon.
8: Bonne ménager, surtout dans nos langues. Quiconque s'est abonné à nous capables de pour ramasser. C'est difficile. Mais mon métier, laver. Comment dire, rester un petit peu dans la main. Comment dire, nous peut rêver dans l'arrière. Et surtout, moi, j'ai mes petits-enfants, tout ça là. Mais dans l'école, qui a été abonné à nous capables de comment réservoir dans Maurice? Un est à fuite.
9: Auréla, il reste toujours pareil pour moi, il n'est pas affecté moi. Pour pas gaspiller, comme si du monde là, il a gagné de l'eau, si pas fait ça pour moi, quand nous prenons manque de l'eau.
10: Pendant un tech, mon problème au tech, mais comme vous avez gagné. Pour les mamans, pas aucun problème là. Par contre, les petits, le tech là, quand il est vide, il paraît plein. Il y a là qui nous problème pour nous. Enfin, vous avez zéli pour nous car pas mal de soif.
0: भविष्य की चिकित्सा का निर्माण आज से ही हो रहा है। इसी दृष्टिकोण के साथ एगल ग्रुप मंगलवार से 2 वैज्ञानिक मंचों की मेजबानी कर रहा है, जिनमें कई देशों के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। समूह के CEO डॉक्टर टीनुष्का ईसा सिंह ने बताया कि तुर्की, भारत, पाकिस्तान, नमीबिया, दुबई और जिम्बाब्वे के विशेषज्ञ इन बैठकों में भाग ले रहे हैं। एस्थेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ईसा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये मंच प्रतिभागियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में हुई नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर के केंद्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उभरते और अभिनव गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी है। ये फोरम 21 जून को समाप्त होंगे। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमरीका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि ये समझौता अब प्रभावी है। अमरीकी अधिकारियों के अनुसार इस सौदे में ये शामिल है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और न ही खरीदेगा, सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा। और आखिर में

चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जो बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा था वो उत्तर पश्चिम की ओर दूर होता जा रहा है। अगले 24 घंटों के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व सेंट्रल पार्टों पर आज सुबह कुछ हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। फिर भी दोपहर बाद को उत्तर उत्तर पश्चिम में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23

रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह और दोपहर बाद को दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:44 पर और आज शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:46 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। गिबेला NHDC D11 गोंबेलिया में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री मोगानादेन किस्नासामी ज्वासागन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 उनके घर गिबेला NHDC D11 गोंबेलिया से उठाकर वैदिक खयोल की शमशान भूमि दी जाएगी। कमीशन टुडे एट 12:30। आलिब्रियन वाकुआ में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखबीर रामचंद जो स्वराज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:00 उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी रामचंद के घर आलिब्रियन वाकुआ से उठाकर आलिब्रियन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रोड बॉडे जामोत में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्यदेव सिबन जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 उनकी पत्नी श्रीमती रेशमा सिबन के घर रोड बॉडे जामोत से उठाकर तोम्बो लेन में बग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। ला शापेल ओडों तेलियन सेंस रोड बोबासे में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञान प्रकाशन मुनियापिली जो नंदा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। वे नंबर 14 न गोल्डन वाली रुआरिस पोर्ट लुइस रहते थे। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 ला शापेल ओडों तेलियन सेंस रोड बोबासे से उठाकर वाली दिप्रैत की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 3:30। बासर रोड कैट्रोबोन में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सुबंती रग्नू जोसे क्वाफेर नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 शुभ यात्रा मोचवेरी बासर रोड कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। कमीशन टुडे एट 9:30। भोला रोड प्लान दे रोश में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती मथुरा पैदाइशी नाम कल्पी और जो दयावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज 9:15 उनके बेटे संतराज मथुरा के घर भोला रोड प्लान दे रोश से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15। B07 जुल बुशरा अबेक्रोम्बी सेंट क्वा में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय नायका जो विकास नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 11:00 उनके घर B07 जुल बुशरा अबेक्रोम्बी सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। महात्मा रोड लालमाटी में 63 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री अशोक सहवन जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 11:00 उनके भाई राजेश सहवन के घर महात्मा रोड लालमाटी से उठाकर मिजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। बुलाकी लेन मिडलैंड में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड के श्री भाविश कन्हैया जो प्रियेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 1:00 उनके घर बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: बर्ड्स, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: गुरुवार 18 जून से शनिवार 20 जून तक सत्यार प्रकाश मास के संदर्भ में रिविया जुगां पर आर्य जिला परिषद द्वारा गुडलैंड्स आर्य समाज में विशेष कार्यक्रम होंगे। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में गुरुवार 18 जून को रॉयल रोड बुआशेरी के बुआशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 3 यज और सत्संग का आयोजन कर रहा है। सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस गुरुवार 18 जून गुडलैंड्स आर्य समाज में शाम के 5 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंग्लैंड की द थ्री लायंस शुरू से ही चीर फाड़ने के मूड में है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पोर्टुगल फंस गया और अफ्रीकी टीमों का गाना बजाना जारी है। कप्तान हैरी केन का डबल, बेलिंगम और राशफोर्ड का एक के गोल 4-2 से इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया। फर्स्ट हाफ में स्कोर 2-2 रहा। विनिंग स्टॉक इंग्लैंड के लिए, जहां अटैक में दम है वहीं डिफेंस में कमजोरी। फिर भी पहला मैच, पहली जीत, वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत इंग्लैंड के लिए। पोर्टुगल की दाल नहीं गली, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पोर्टुगल के साथ वही किया जो केप वर्दी ने स्पेन के साथ किया था, पर यहां मैच ड्रॉ गया 1-1। कोंगो का पहला गोल वर्ल्ड कप में। योआओ नेवेज ने पोर्टुगल का गोल स्कोर किया। न्यूकासल यूनाइटेड के स्ट्राइकर योवान विसा ने इक्वलाइज किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ खास नहीं कर पाया। फाइनल स्कोर पोर्टुगल 1, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1। इंग्लैंड के ग्रुप में गाना की जीत। पनामा के खिलाफ कालेब यिरेंगी का इंजुरी टाइम में गोल परफेक्ट होल्डअप रहा। वर्ल्ड कप 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली टीम है गाना। गाना का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ है। इसी समय ग्रुप के का मैच चल रहा है उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच। कोलंबिया की टीम ने पहले स्कोर किया है 1-0 से आगे। सो आज ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हुए। आज से सभी टीमें अपना दूसरा मैच खेलेंगी। ग्रुप ए में चेक रिपब्लिक वर्सेस साउथ अफ्रीका ये रात्रि के 8 बजे और ग्रुप बी में 11 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस बोस्निया। कनाडा का मुकाबला कतार से होगा कल सुबह 2 बजे। फिर कल सुबह 5 बजे मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया ये ग्रुप ए वाला मैच है। ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ कोरिया के पास 3-3 अंक है। चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका दोनों की हार हुई थी। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड, कनाडा, कतार, बोस्निया सबके खाते में एक ड्रॉ के साथ 1-1 अंक। ट्रांसफर न्यूज। लिवरपूल स्पेन के इंटरनेशनल विंगर विक्टर मुनोज को साइन करना चाहता है। ओसासुना का खिलाड़ी मुनोज अभी स्पेन के साथ वर्ल्ड कप में है। लिवरपूल उसके कॉन्ट्रैक्ट के 34.6 मिलियन £34.6 मिलियन स्टर्लिंग रिलीज क्लोज ट्रिगर कर रहा है। खबर है लिवरपूल की मेडिकल टीम यूएसए में है मुनोज का मेडिकल पूरा करने के लिए। न्यूकासल यूनाइटेड मुनोज के पीछे था, पर लगता है लिवरपूल बाजी मार गया। वेस्ट हैम यूनाइटेड के इंटरनेशनल डच स्ट्राइकर समरविल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनहम हॉटस्पर रेस में है। रियल मैड्रिड ने बेर्नार्डो सिल्वा को साइन कर लिया। फ्री ट्रांसफर है। सिल्वा वहां अपने हमवतन मोरिनो की छत्र छाया में खेलेगा। क्रिकेट। भारतीय टीमों की हैट्रिक। एक तरफ विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय विमेन टीम ने नेदरलैंड्स को 95 रनों से 95 रनों से हराया। इंडियन विमेन टीम की दूसरी जीत है ये। फिर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को हराया 101 रनों से और इंडिया की एलीट सीनियर टीम ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हराया। इस मैच में टीम इंडिया की ओर से 402 रन बने। गिल और ईशान किशन की ओर से सेंचुरीज शतकीय पारी रहे। साइकिलिंग। टू डे स्विट्जरलैंड के पहले स्टेज में किम्बर्ली लेको दे बियोपिना 4th स्थान ले पाई। एथलेटिक्स में राशेल क्लोफेंस्टाइन ने 800 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ओस्ट्रावा के गोल्डन स्पाइक मीटिंग में राशेल 4th स्थान पे आई और फिर से 800 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। इंग्लैंड की शानदार शुरुआत, 4-2 की जीत क्रोएशिया पर। गाना की भी जीत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पोर्टुगल फंस गया ड्रॉ मैच और इसी समय मैच चल रहा है उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच। इन सब पर आपको ज्यादा जानकारियां देंगे 7:40 पर RM2 पर। और भूलिएगा नहीं, 8:30 स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन ये होगा RM2 पर 8:30 बजे।

0: नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले टमागे के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अविनी कैपिटन, उदेसी टमागे और विलाश टमागे के रहने वाले निवासियों को शुक्रवार 19 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच। साथ में है वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है ओलीवुड नंबर 1, रूट कैस कॉटन नंबर 2 के कुछ भागों में, साथ में है रूट देवेगु के कुछ भागों में, रूट लामारी, रूट बेगु, रूट बनफे, शमे रिजर्वोर, डूडी लेन, शमे लासोस, मुटू लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 28 जून 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है मौसलमा राफ्रे, मौसलमा बेजिराज, मौसलमा बेलव्यू, एवेन्यू उरागन, एवेन्यू विक्टोरी, एवेन्यू सेंट जेरान, एवेन्यू बाउंटी, एवेन्यू अल्बाट्रोस, एवेन्यू डालिया, एवेन्यू ट्यूलिप, एवेन्यू फ्रांजिपान, एवेन्यू रोज, एवेन्यू ओये और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे के बीच, फिर सपहर के 3 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है अस्ट्रोलैब, कैटीशॉक, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैक, अस्ट्रोलक्स और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है बेलते अविलाज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 20 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रखेंगे।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए स्टूडियो की घड़ी में 7:03 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में गुरुवार का दिन है आज, और आज है 18 जून 2026। सभी सुनने वालों को हम कहेंगे हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुहाना सफ़र जो है हम जारी रखने वाले हैं दिन के 11 बजे तक। तो चलिए श्रोताओ, गुरुवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, मंगलमय हो, दिल की गहराई से हमारी यही कामना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चिंतन के साथ, चिंतन डॉक्टर शांति मोहावीर जी की प्रस्तुति में।

0: जागरण का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी सबको प्रिय है। अंतर केवल मीठी बोली है, जिससे सब अपने बन जाते हैं।

तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चले हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज है गुरुवार, आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह कन्या स्नान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे चन्न सदाबहार गीत। 8 बजे भोजपुरी समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के उस पार चंद द्वैत गाने। इसके बाद 8:50 पर हमारी धरोहर ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में, साथ में आपके लिए एक भोजपुरी गीत। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ। इसके बाद 10 बजे फिर से आप समाचार सुन पाएंगे। भक्ति धारा ये कार्यक्रम होने वाला है 10

0: बजकर 3 मिनट पर और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से, और ये कार्यक्रम आप 10:30 बजे सुन पाएंगे। 11 बजे समाचार के बाद आप सैदा के साथ सुन सकेंगे उर्दू कार्यक्रम। दिन के 12 बजे गिरिशानी लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। तमिल भाषा में कार्यक्रम सुंदरम के साथ 12:30 बजे। 1:30 बजे मराठी कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी प्रीति, जिनके साथ आप मंडारिन कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर के 2 बजे। 2:30 बजे गुजराती कार्यक्रम अमिता के साथ। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 2:45 पर सुमिता की प्रस्तुति में। और समाचारों के बाद जहां दोपहर के 3 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर, और भक्ति सागर सुमिता की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा कार्यक्रम होने वाला है। और ये कार्यक्रम जो है पीयूष धारा जो है आप डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। चंद पुराने गीत पूनम के साथ शाम के 5 बजे। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। इसके साथ ही आप चंद फिल्मी गाने 6:20 पर सुन पाएंगे। 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम दाविद के साथ। तमिल भाषा में कार्यक्रम रात्रि के 7 बजे युवरासन के साथ। वर्षा लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम 7:30 बजे। 7:50 पर गीत गंगा मराठी भाषा में शिरीष के साथ। भजले प्रभु का नाम देवना की प्रस्तुति में 8:10 पर। 8:40 पर मैं फिरे शब ये कार्यक्रम उर्दू भाषा में समीर के साथ। भोजपुरी तड़का किरण की प्रस्तुति में रात्रि के 9 बजे। और रात्रि के 11 बजे सुनहरे पल ये कार्यक्रम गिनशा के साथ चंद पुराने गाने आप सुन पाएंगे। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में। तो चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां
1: झलकियां
2: झलकियां
3: झलकियां 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

श्रोताओ, जब शब्दों में भाव हो और धुन में अपनापन हो, तभी गीत सदाबहार बनती है। बीते हुए खूबसूरत पलों की मीठी यादें अब तक हम पहुंचा रही हैं। ये रेडियो मॉरिशस है आपके लिए। सुबह का नजाना कार्यक्रम चंद पुराने गाने।

0: चलिए श्रोताओं, मन में विश्वास हो, चेहरे पर मुस्कान और कर्म में निष्ठा हो तो हर दिन अपने आप शुभ बन जाता है। तो चलिए आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो। चंद प्यारे गीत आपकी सेवा में रेडियो मॉरिशस पे।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।

1964 की मूवी संगम। इस फिल्म में राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार जो है मुख्य भूमिकाओं में रहे। और कहते हैं ना, पुरानी फिल्मों की बात कुछ और ही थी। संगम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, प्यार और भावनाओं का एक ऐसा संगम है जिसे आज भी दर्शक बड़े प्यार से याद करती है। तो चलिए, गीतों का एक खूबसूरत सफ़र इसे हम जारी रख रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, चंद सदाबहार गीत आपके लिए।

श्रोताओं, दिल से किया गया प्यार हमेशा सम्मान, विश्वास और अपनापन लेकर आता है। प्यार का असली रंग तब दिखाई देता है जब साथ मुश्किल समय में भी बना रहे। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म संगम का एक बहुत ही प्यारा संगीत अभी आपने सुना। अरब फिल्म सरगम से लिया गया गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन पाएंगे।

श्रोताओं, अगर रास्ता कठिन हो तो समझ लीजिए मंजिल खास है। इसलिए कहते हैं अपने रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि भीड़ हमेशा बने बनाए रास्तों पर चलती है।

0: सपने साजन के फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। छोटा ओ प्यार जिंदगी का वह गीत है जो हर पल को यादगार बना देता है। चलिए गीतों का एक खूबसूरत कारवा इसे हम आगे बढ़ाएंगे। ये रेडियो मॉरिशस है, सुबह का नजाना कार्यक्रम आपके नाम हमसे जा रही है।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं, आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार सुबह का नजाना कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे चंद द्वैत गानों के साथ। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम करेंगे, आपको हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बजे का। नमस्ते, अब जब भोजपुरी में समाचार सुने जा। बजट पेश होला से एक दिन आगे कुगान पकापेन प्रस्ताव दिलन कि उच्च आय वाला परी टैक्स बढ़ा के ईंधन की कीमत में 5 रुपया प्रति लीटर के कटौती करा जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली

0: मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पर ही भारी पड़ा था। बजट के लिए के मॉरिशस में बहस छिड़ल बाटी, जहां पर ही जूनियर मंत्री कुगान पहापेन सामाजिक न्याय खातिर उच्च वेतन होला पर ही टैक्स बढ़ाए के समर्थन करत हवन हुआ। पात्रिक बिल को एकर विरोध करता, बिल को के तर्क है कि कर बढ़ाए से ई लोग देश से बाहर चल जाए स एकर विकल्प के रूप में उ प्रस्ताव दिलन कि अमीर के कर से छूट देवल जाए यदि उ लोग राशि के सामाजिक आवास परियोजना में निवेश करियन स। बजट पेश होला से ठीक आगे जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम संगे होल पूर्व बजट चर्चा के महत्व पर ही जोर दिलन। बोलेलन कि पिछला बजट घोषणा विफल रहल, यही खातिर अब अर्थव्यवस्था के सुधारे के और सही दिशा में ले जाए खातिर नवा और ठोस कदम के आवश्यकता बाटे। चीनी उद्योग के लक्ष्य 2029 ले उत्पादन बढ़ाए के 2,50,000 टन करे के है। ई लक्ष्य के हासिल करे खातिर MCIA 210 मिलियन रुपये के तत्काल निवेश के मांग करता, ताकि सेक्टर के उत्पादकता के सही समय पर ही बढ़ावा देवल जा सकी। जलाशय के गिरते स्तर के कारण वक्वा क्यूपी पौरुमुखा सहित कई इलाका में पानी की आपूर्ति सीमित कर देवल गलबा। अब निवासी लोग के दिन में खाली 5 से 6 घंटा ही पानी मिलता। और दूसरे देश के खबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति युद्ध समाप्त करे खातिर एगो समझौता पर ही हस्ताक्षर करलन स। समझौता के तहत ईरान परमाणु हथियार न बनाए के और सब मोर्चा पर युद्ध रोके पर सहमत होल बाटे। कर संगे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फेनो से खोलल जाए, इस समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गल बा। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आवाज़ मरने की खबर सुना जा। जेबेला NHDC D11 ग्रांड बेलिया में दो कोरी बारबरिस के 52 अंके श्री मोगानादेन किस्नासामी जयाजागर नाम से जस्ती जाने तेजात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माठी आज दिन के 12 बज गया था उकर खरे। जेबेला NHDC D11 ग्रांड बेलिया से उठा के रिवे देखे उलके शमशान भूमि ले जावल जाए। आलिब्रियो वाकुआ में 3 कोरी 3 बरिस के 63 अंके श्री सुखबीर रामचंद जिस्वराज नाम से जस्ती जानत जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बजे उकर पत्नी श्रीमती मालिनी रामचंद के घरे आलिब्रियो वाकुआ से उठा के आलिब्रियो के शमशान भूमि ले जावल जाए। रारोड बाजामोहट में 2 कोरी 11 बरिस के 57 अंके श्री सूर्य देव सिबन जे सूरज नाम से जस्ती जानत जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उकर पत्नी श्रीमती रेशमा सिबन के घरे रारोड बाजामोहट से उठा के तोम्बो लेन में बग के शमशान भूमि ले जावल जाए। लाशापेल औदों तेरियन संस रारोड बुबासे में 4 कोरी 4 बरिस के 84 अंके श्री ज्ञाना प्राक गासन मुनियापिले जेनंदा नाम से जस्ती जाने ते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा लाशापल औदों तेरियन संस रारोड बुबासन से उठा के वाली रिपैत के शमशान भूमि ले जावल जाए। शुभ यात्रा मोचवेरी बासन रोड कटरो बोल में 3 कोरी 15 बरिस के 57 अंके कुमारी सुबंती रग्नु जे सर क्वाफेयर नाम से जस्ती जाने ते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 9 बज के आधा उकर शुभ यात्रा मोचवेरी बासन रोड कटरोबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। भोला रोड प्लेन दे रोश में 3 कोरी 16 बरिस के 67 अंके श्रीमती पद्मावती मथुरा पैदाशी नाम कल्पी अर्जे दयावती नाम से जस्ती जाने ते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन की 9 बजे उकर बेटा राज मथुरा के घरे भोला रोड प्लेंडेहोश से उठा के पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए। B07 जुल बुशेरा अबेखोंबी सेंट क्वा में 2 कोरी 6 बरिस के 46 अंके श्री अजय नायका जीविकाश नाम से जस्ती जाने ते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बजे होकर घरे B07 जुल बुशरा बैखोंबी सेंट क्वा से उठा के सिपाही भूई लेके शमशान भूमि ले जावल जाए। महात्मा रोड लालमाटी में 3 कोरी 3 बरिस के 63 अंके श्री अशोक सहवन जय अशोक नाम से जस्ती जाने ते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11

बजे उकर भाई राजेश सहवन के घरे महात्मा रोड लालमाटी से उठा के मेजिंग कौनमास के शमशान भूमि ले जावा जाए। बुलाकी लेन मिडलैंड में एक कुरी बारह बरिस के थौंडोजों के श्री भावेश कन्हैया जे प्रियेश नाम से जस्ती जानत जात्रा नंजा गुजर कल हवन उकर माठिया आज दिन के एक बजे उकर खरी बुलाकी लेन मिडलैंड से उठा के होजबेल के शमशान भूमि ले जावा जाए। रू पेपिनिया को तेज में तीन कुरी पंद्रह बरिस के सुसन कैजों के श्रीमती जयंती रामलोखन पैदाइशी नाम तो पुसी आज विद्या मुजिस नाम से जस्ती जानत जात्रा नंजा गुजर कल हवन उकर माठी आज दिन के ग्यारह बजे उकर खरे रू पेपिनिया को तेज से उठा के बेलमो के शमशान भूमि ले जावा जाए। शिवाला रोड मोड स्थानिया में तीन कोरी बारह बरिस के सुसंधु सौके श्री ईश्वर लाल सिंहतन जयपुर नाम से जस्ती जानते छात्रा चाहो गुजर कल हवन उकर माठी आज दिन के ग्यारह बजे उकर पत्नी श्रीमती चंद्रानी सिरहतन के घरे शिवाला रोड मोड स्थानिया से उठा के भूसौश के शमशान भूमि ले जावा जाए। शोक में डूबल इस सब परिवारों के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थे जा।

चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। 8:12 हो चुके हैं, तो चलिए इस समय से लेकर 8:50 पर आपके लिए, जी हाँ, इस समय से लेकर 8:50 पर आपके लिए लाए हैं चंद डुएट्स गाने। और ये पहले डुएट्स जो है फिल्म लक्की से लिया गया, और फिल्म लक्की जो है साल 2005 की मूवी है। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा से लिया गया गीत जो है, इस फिल्म से लिया गया गीत जो है, जिसमें सलमान खान और स्नेहा उल्लाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो इन लोगों पर फिल्म आ गया ये प्यारा सा गीत जो है लता मंगेशकर और अदनान सामी की मीठी आवाज़ों में। ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम करने वाले हैं।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 8:19 हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। अल्बियों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मार्सेलमान राफ्रे, मार्सेलमान बियाजिराज, मार्सेलमान बेलव्यू, एवेन्यू उरागन, एवेन्यू विक्टोरी, एवेन्यू सेंट जेरान, एवेन्यू बाउंटी, एवेन्यू अल्बाट्रोस, एवेन्यू डालिया, एवेन्यू टुलिप, एवेन्यू फ्रांजिपान, एवेन्यू रोज, एवेन्यू ओये और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 18 जून 2026 को

0: सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे के बीच, फिर सपहर के 3 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है अर्बियों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अस्ट्रोलब, कैटिशॉक, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैट, अस्ट्रोलक्स और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: Qui peut arriver? T'as des allos au terrain, toi? Jesse, foulard, saucette, moulton, dîté, café?
2: Mais qui te met quoi? Moi, pas envie au jeu pour Coupe du Monde, moi. Mon fini prend mon DSTV Stream Code Mighty. Tous les 104 matchs, exot highlights, tout en anglais. Zis pour 390 roupies.
1: Hé, hey, mais moi, mon compte en suivi football en français.
2: Mais ça aussi, Mighty, y'en a. Prends ton pack New World Sport, zis pour 300 roupies. Vivez l'ambiance du stade directement dans votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Sport selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables.
1: Mighty? Mighty, c'est ça!
3: 819 kHz, c'est Radio Mauritius. Radio Mauritius.
0: चलिए श्रोताओं, 8:22 हो चुके हैं। चंद डुएट्स गाने आपके लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अलका याग्निक, सुनील निगम की मीठी आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत, पॉपुलर गीत कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म से लिया गया गीत जो है आप सभी म्यूजिक लवर्स के लिए।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना श्रोता हो, और अलका यज्ञिक और सुनी निगम की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत कभी खुशी कभी गम फिल्म से लिया गया। एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत आज भी लोग बहुत ही प्यार के साथ गुनगुनाते हैं। विदेशों की मनमोहक वादियों में फिल्माया गया यह गीत न सिर्फ आँखों को सुकून देता है बल्कि दिल को भी अलग एहसास से भर देता है। कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो तो

हर पल और भी खूबसूरत लगने लगता है। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है दिलवाले। अरिजीत और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में ये अगला गीत है जो है आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए इस समय बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके फ़ोन कॉल्स के लिए जो सुबह सुबह हमें प्राप्त हो रही है। साथ में आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए भी हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद करने के लिए।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत रोमांटिक गीत अभी आपने सुना, और ये गीत जो है हर लोग जो है बहुत ही प्यार के साथ गुनगुनाती है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, कहते हैं ना महसूस किए जाते हैं, और गेरुआ उन्हीं गीतों में से एक है जो प्यार के रंग को दिल की गहराइयों तक पहुंचा देता है। तो चलिए श्रोताओं, हम अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत जो है आप छोटी सी बात फिल्म से लिया गया, ये गीत आप यशुदास और आशा भोंसले की आवाज़ों में सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, फिल्म का नाम है धर्मवीर, और धर्मवीर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती और रिश्तों की ताकत का प्रतीक है। और फिल्म के गीत बेहद ही लोकप्रिय रहे, खासकर सात अजूबे इस दुनिया में आज भी दोस्ती और अपनापन याद दिलाता है। तो चलिए एक अंतिम गीत आपके लिए किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है अपराध।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोताओ, अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे। समय हुआ है हमारी धरोहर का। ये कार्यक्रम आप किरण जानकी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। काल हमने सुलिचित चक्र प्रतिष्ठान पर बातचीत शुरू कर ले रही जा और देख ली जा कि कैसे हियाँ पर आगे के समय में जोन चक्र प्रतिष्ठान रहल, जोन मूला रहल, जोन ढाका रहल, आज उ नहीं बा। आज ओकर यादगार बा, ओकर निशानी बा। और हियाँ पर एगो इंडस्ट्रियल जोन बा और हियाँ के जोन कल्चरल हेरिटेज कोऑर्डिनेटर जेमी दुजिया सिंह हवन, वो हमने के समझेले हवन कैसे ई जोन जगह बा एकर संरक्षण तेगा बहुत सुनियोजित रूप से, बहुत सुंदर रूप से करता, ई जगह के फिर से इस्तेमाल कराल जाता अलग अलग प्रयोजन से। और जब विरासत, जब धरोहर के बात करबा तो ई बात सबसे ज़रूरी है कि जोन एगो पुराना इमारत बा ओकर संरक्षण करे खातिर चाहे ओकर इस्तेमाल करते रहेगी, ई तरह से ओकर मैतिनॉस भी हो ले जाए और उ जोन पुराना इमारत बा उ खराब नहीं हुई। तो काल बोलत रह लीजा कि हर एगो जोन ढाका बा हुआ पर मजदूर लोग रहत रहन सा, हुआ पर उ लोग के मालिक भी रहत रहन सा। और मूला में कोनो समस्या रही तो चाहत उ मूला के जोन मालिक बा और हुआ पर काम करे होला जोन मजदूर हवन सा, उ लोग के उपस्थिति रहेगी। और यहाँ पर कौ खावा ये मूला के भेरी रहल, आज भी ई कौ सुलिचित के एगो गांव में परिवर्तित हो गल बा। और जैसे तोहरा बोल ली घुपतेगा, उ सब माटी के मालिक आज नहीं बा जहाँ मजदूर लोग काम करत रहन सा, आज हियाँ गांव बस गल बा और जनता हियाँ के इंडस्ट्रियल जोन में अपन नवा जगह पहले हवन सा। और यही चीनी प्रतिष्ठान आज दर्जनों कंपनी से गौपला से हो गल बा और सुरिचित के विकास में वो लोग सहयोग देवत हवन जा। ई दुनिया में जहाँ नियमित विकास हुआ था, हुआ अच्छा से जिए खातिर चाहेला हमने के अपन जड़ी जाने के, तब सकप सा हमने अपन वर्तमान के जाने और भविष्य के बारे में सोचे। एगो फ्रेंच राष्ट्रपति शॉल दे गोल बोलले हवन कि जोन जनता अपन इतिहास नहीं जानेला, वो अपन वर्तमान नहीं सकी समझे और अपन भविष्य नहीं सकी तय करे। आज सुरिचित में हमने के चाहेला अपन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के जिंदा रखे के और जोन कुछ भी बचल बा, जैसे हियाँ के लक्ष्मीनिया, हियाँ के जिस्टिलरी आदि, ई सब जोन मूला के चारों ओर रहल उ जमाना में अलग रूप में, हियाँ पर अब देखत है सा कि कृषि सेक्टर के बजाय नवा नवा कंपनी स्थापित हो गल बा, नवा नवा कंपनी के शामिल करल गल बा। सब कुछ एक जगह सौथालीजे नहीं करल जाए, काहे कि काम जोन चलेला

जनता तक ही चाहेला सीमित नहीं रहे के चाहेला ऐसन ऐसन जगह के डिसेंट्रलाइजे करे के जहाँ पर जनता सखी जाके काम करे एक ही जगह पर सब कुछ बनेबा तो आज नवा नवा समस्या बा जैसे ट्रैफिक जाम जैसे एगो जगह से दूसर जगह जाके आज वर्क फ्रॉम होम के ज़माना चलता तो इ खातिर सब जन कंपनी बा ओके डिसेंट्रलाइजे करल जाता और इ दिशा में सुनिश्चित के इ जन इंडस्ट्रियल जोन बा इ क्षेत्र में अपन योगदान देवता यहाँ पर काफ़ी हद तक कंपनीज लोग डिसेंट्रलाइजे होके आल हवन सा और सुनिश्चित अपन योगदान देवता देश के विकास में एगो सेमी इंडस्ट्रियल जगह पर देश भर में गांव के इलाका में और सुनिश्चित ऐसा उद्योग लोग के विकास में मदद करता भविष्य खातिर एगो विरासत होला जगह के ऐसा इस्तेमाल संरक्षण जहां उद्योग कायम बा बहुत ही सराहनीय बा कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद कल फिर मिलब जा नमस्ते।

चलिए श्रोताओं, हम चलाएंगे एक भोजपुरी गीत आपके लिए। कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पर आपके लिए आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ। तो मिलेंगे 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिएगा, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे है। अब आप थोड़ी ही देर में आप विधिमा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार विधिमा।
2: नमस्कार अनुराधा जी, सभी को नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। बजट से एक दिन पहले कुगान बहापन ने ईंधन की कीमतों और कर व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपये की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक टैक्स लगाकर किया जाए। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में VAT और ईंधन करों का बोझ आम परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है। वहीं ओनावो मोरिस के नेता पैट्रिक बिल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम टैक्स के

0: बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बजट 2026-2027 से एक दिन पहले श्रमिक संघों ने सरकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपील की है। GWF के अश्विन गुदे ने कहा कि पिछले बजट के कई उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, जबकि मॉरिशस लेबर कांग्रेस के हनीफ पिरन ने कीमतों पर नियंत्रण, रुपए की स्थिरता और सामाजिक सहायता बढ़ाने की मांग की। बजट से पहले चीनी क्षेत्र ने भी अपनी उम्मीदें जताई हैं। MCI का लक्ष्य 2029 तक चीनी उत्पादन बढ़ाकर 2.5 लाख टन करना है, जिसके लिए अभी से निवेश जरूरी है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को कम से कम 210 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी। अन्य खबरों में, जलाशयों में पानी का स्तर घटने के कारण आज से मऊ वाक्वा जलाशय से जुड़े कई इलाकों में नए जल वितरण समय लागू कर दिए गए हैं। वाक्वा क्यूपिप का ट्रोबोन, बुबासें, रोजहिल, मुका और सैंपिया सहित कई इलाकों में अब पानी केवल 5 से 6 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होगा। विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक समझौता किया है। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा या खरीदेगा, सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा। और नए शोध से पता चला है कि बर्ड फ्लू ने ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के अंटार्कटिक द्वीपों पर हजारों दक्षिणी हाथी सील के बच्चों की जान ले ली है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 9 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आप सभी को नमस्कार और आदाब। आशा करती हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और आज हमारे साथ वैसे टेक्निक पर फैजन नूटाली हैं और प्रोडक्शन सहायिका है दीपशिखा और हमारे जो प्रोड्यूसर है निज़ाम, वे लोग बिल्कुल तैयार हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए और मैं भी बिल्कुल तैयार हूं और यही आशा करते हैं कि आप 10 बजे तक हमारा साथ ज़रूर देंगे। वैसे आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में काफ़ी महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है। वो क्या है? क्या संगीत और योग मिलकर मानसिक शांति को और बढ़ा सकते हैं? तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित एक प्यारी सी युवती और आप हैं उवानी रामखिलावन और वे हिंदुस्तानी वायलिन की पार्ट टाइम प्रशिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं यानी इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ही महात्मा गांधी संस्थान में योग की व्याख्याता यानी कि लेक्चरर भी हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं और युवानी आपको नमस्कार कहते हुए
1: नमस्कार।
0: आपको इस प्रोग्राम में हम हार्दिक स्वागत करते हुए आपसे ये पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं और दर्शकों आपको देख रहे हैं, पहले आप ठीक हैं?
1: जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: आप ठीक हो तो आप हमें बताएं कि वैसे आपके जो संगीत सफ़र के बारे में कुछ हमें बताइए।
1: सबसे पहले दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा संगीत सफ़र मेरे बचपन में ही शुरू हुआ, जब मैं 7-8 साल की थी। उस समय काचरबोन में सरगम अकादमी ऑफ म्यूज़िक एंड डांस का एक स्कूल हुआ करता था और मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे और मेरे भैया को बस में ले जाया करते थे संगीत सिखाने।
0: और आप कहाँ रहती हैं
1: अभी? मैं कौरेमास रहती हूँ। उस समय मैं रिविया जुगांपा रहती थी।
0: उस समय जब आप बोल रही थी कि आप 7 साल की थी तो रिविया जुगांपा से काचरबोन आया करती थी
1: जी,
0: पापा मम्मा के साथ आ गया करती
1: जी।
0: तो अभी आप संगीत के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई हो और ये भी हम लोगों ने जाना कि संगीत के साथ साथ आप योगा के लेक्चरर भी हैं। तो फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे अगर आप संगीत के दुनिया में हैं तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आने के लिए?
1: इस संगीत के एक क्षेत्र में आने के लिए मुझे मेरी माँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि वो खुद बहुत साल पहले MGI में अपना डिप्लोमा इन वोकल हिंदुस्तानी किया। तो जब भी मैं उनको गाना गाते हुए सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखूं जिसे मैं उनको एकॉम्पेनी कर सकूं।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा, मामा को देखकर ही आपने जैसे जैसे इंस्पायर हुई कि मैं भी संगीत के क्षेत्र में, तो फिर आप इसी क्षेत्र में आगे क्यों बढ़ती गई?

0: मुझे वायलिन बहुत पसंद है। मैं वायलिन
1: पाठक हैं आप, मतलब आप इतने सारे जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होती है,
0: हाँ?
1: जैसे कि सितार है, तबला, लड़कियां भी आज तबला
0: जी
1: खेलती हैं, फिर है नृत्य और गायन के क्षेत्र में, तो आप वायलिन करती हैं
0: जी,
1: क्यों इस क्षेत्र को चुना आपने?
0: मुझे वायलिन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मैं कोई गाना सुनती हूँ तो वायलिन पर मैं वो गाना बजाने का प्रयास करती हूँ, और जैसे हम फिंगर्स यूज़ करते हैं नोट्स बजाने के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैंने वायलिन सीखा और सिखाती भी हूँ।
1: तो बचपन से तुम मतलब जब 7-8 साल की, तुम्हारे साथ वायलिन सिखाना इसी से शुरू किया या फिर नोट्स वगैरह दे करके तब बाद में वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हाथ में आया?
0: नहीं, पहले मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था जब मैं काठरबोन जाती थी, बाद में जब मैंने एनजीआई ज्वाइन किया तब मैंने अपना खुद का वायलिन लिया, तब इसी से मैं सीखती गई और सिखाती भी हूँ।
1: अच्छा, तो ये वायलिन जो है वो कंपेयर टू मतलब सितार, तबला वगैरह, ये वायलिन कुछ डिफिकल्ट नहीं मिला तुम्हें?
0: नहीं
1: नहीं
0: नहीं,
1: अगर इस क्षेत्र में तो बिल्कुल यकीनन तुम्हें डिफिकल्टीज नहीं
0: हुई। नहीं।
1: और एमजे में तुम ये पढ़ाती हो वायलिन, हिंदुस्तानी में जो शास्त्रीय संगीत होता है, तुम ये कब से वहाँ कार्यरत हो?
0: MGI मैंने वायलिन सीखना 2012 से शुरू किया, तब मैंने अपना सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, फिर डिप्लोमा, और बाद में मैंने BA टॉप अप किया वायलिन हिंदुस्तानी में। तो हाँ, शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रीय म्यूज़िक ही मैं सीखती थी, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक ही सिखाती हूँ।
1: और कितने तुम्हारी कितने विद्यार्थियाँ हैं, मतलब लड़का लड़की दोनों हैं तुम्हारी क्लास में?
0: दोनों हैं, लड़का भी है, लड़कियाँ भी हैं, दोनों।
1: लोग कैसे दिलचस्पी रखते हैं इस क्षेत्र में?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्पी रखते हैं।
1: उन लोगों को नहीं कहते हैं कि ये आज मैंने शुरू किया फिर 1-2 सप्ताह बाद छोड़ देते हैं, ये नहीं?
0: मुझे मिला है ऐसे केसेस, लेकिन मुझे
1: उन लोगों को
0: कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं सीखो, अब क्षेत्र में आ गए हो तो सीखो और सीखो, शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन बाद में आसान हो जाएगा।
1: तो युवा ज़्यादा युवा है, मतलब यंगस्टर्स हैं इसमें या फिर?
0: नहीं, एडल्ट्स भी हैं,
1: एडल्ट्स
0: भी हैं।
1: और वो लोग मुझे जैसे तुम सिखाती हो, उन लोगों को क्या क्या एक्सप्रेशन है उन लोगों के मुख पे कि वो अच्छा लग रहा है जिस तरह तुम सिखा रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे अभी तुम देख रहे हो बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही छोटे उम्र में बड़े बड़े को सिखा रही है, तो उन लोगों के रिएक्शन कैसे हैं?
0: उनको किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं तो अपना कार्य करती हूँ, सिखाती हूँ।
1: बिल्कुल। अच्छा युवानी, इस रविवार को यानी 21 जून को हम सब मतलब विश्व संगीत दिवस मनाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ भी वर्ल्ड योग दिवस भी मनाएंगे। और जब भी तुम योग के लेक्चरर भी हैं तो MGI ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम कर रही हो
0: जी,
1: वो कब से?
0: 2019 से। पहले मैंने सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा एंड योगा अवेयरनेस कोर्स से शुरू किया, फिर अब मैं डिप्लोमा इन पंचकर्म का कोर्स करती हूँ, इसमें एक मॉड्यूल है योगा, वो सिखाती हूँ।
1: तो तुमने यही मॉरीशस में सीखा अपनी, जैसे कहाँ तक पढ़ाई योगा?
0: नहीं, अपने योग के स्टडीज़ मैंने पहले BSc किया स्वामी विवेकानंदा योगा अनुसंधान संस्थान में, जो बेंगलोर में है, वहाँ डिस्टेंस कोर्स किया, फिर BSc के बाद MSc किया, अभी हाल ही में मुझे मेरा मैंने अपना ग्रेजुएशन किया
1: MSc।
0: धन्यवाद।
1: तो आप के संगीत का, आपके जीवन में संगीत का क्या महत्व है, क्या क्या कह सकते हैं इस बारे में?
0: मेरे लिए संगीत का महत्व लोगों को एकजुट करता है, प्रतिभाओं अनेक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है, लोगों को ये अवसर प्रदान करता है कि वो अपना टैलेंट

0: एक्सप्रेस करें।
1: और तुम खास करके तुमने कभी मतलब अपनी जो जैसे कि इंस्पायर हुए अपने माता पिता से, कहीं ऐसा मौका मिला कि तुम एक प्लेन में या फिर बहुत लोगों के सामने अपना
0: जी प्रतिभा? बहुत मौका मिला मुझे। हाँ, जब मैं अपना वायलिन का कोर्स करती थी एमजीआई में, तो मुझे मौका मिला एनुअल शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे मौके मुझे मिले हैं एमजीआई के बाहर भी।
1: तो बेंगलोर से तुमने अपना जो एमएससी मतलब मास्टर्स किया?
0: हाँ।
1: और काफ़ी जैसे कंग्रेचुलेशंस तुमको बता भी कह गया, क्योंकि तुमने कहा कि तुमने काफ़ी अभी अपने ग्रेजुएशन की और काफ़ी ओहदे पर पहुंच भी गई है। हाँ। इतने कम उम्र में हम कह सकते हैं। तो अभी रविवार को हम लोग संगीत दिवस मना रहे, क्या क्या कहना चाहेंगी तुमको, कैसे ये संगीत दिवस जो है तुम्हारे मायने, क्या क्या कह सकते हो तुम इसके बारे में?
0: मैं इतना ही कहूँगी, संगीत सीखिए, संगीत से जुड़े रहिए, संगीत एक आर्ट है, योग भी एक आर्ट है, बस इतना ही कहूँगी।
1: आगे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग योग और संगीत, उसका ये संबंध कैसा है, मतलब अगर ये दोनों साथ मिल करके कुछ हमारे जीवन शैली में वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरह आगे बढ़ाते हैं, इस पर ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। और अपने श्रोताओं और दर्शकों से मांग करेंगे, अगर कुछ आप जोड़ना चाहेंगे 4028085 के ज़रिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कोई विचार भी देना चाहेंगे आप बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो विश्व संगीत दिवस के लिए क्या मायने रखता है? तुमने बताया कि तुम यही कहते हैं कि लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग संगीत सीखें, लेकिन तुमने जब संगीत सीखा, तुमने संगीत बहुत छोटी उम्र में, तो कैसे उसके प्रैक्टिस करते हो घर पर? जैसे वायोलिन, अगर पहले तुम्हारे पास वायोलिन नहीं थी तो तुमने खरीद करके तब उसके प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के तो ये नहीं हो सकता है।
0: हाँ।
1: तो कौन से ऐसी डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ तुमको मिला जब ये मतलब काफ़ी 5-6 सालों से कैसे तुमने महसूस किया कि चलो ये वायलिन ही में मुझे सीखना है, दूसरे मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं?
0: मेरे जो गुरु है उनको मैं हमेशा टीवी पर देखती हूँ वायलिन बजाते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी उनके जैसा बनूँगी। और हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत करना चाहिए। पहले शुरू में डिफ़िकल्टी हाँ होता था नोट्स बजाने के लिए, हैंडलिंग ऑफ द बो, हैंडलिंग ऑफ द वायलिन, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया। और ट्यूनिंग ऑल्सो, ट्यूनिंग भी, वायलिन का ट्यूनिंग भी मुझे नहीं आता था, अपने गुरु को देख देख कर मैंने सीखा।
1: बिल्कुल, सीख सीख कर के तुम, लेकिन जब देखते हैं एक वायलिन हम लोगों को अपने गले पर मतलब जिस तरह हम लोग पकड़ते हैं वो काफ़ी मुश्किल दिखता है।
0: हाँ।
1: लेकिन तुमको तो ये नहीं मिला?
0: नहीं,
1: ये मुश्किल अभी तक नहीं है। तो तुमको बहुत बधाई कहेंगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो हम सब नृत्य के क्षेत्र में जाते हैं और सितार वादन करते हैं, साथ में हम लोग गायन के क्षेत्र में ये जाते हैं। तो हम आपसे यही मांग करेंगे, अगर आप लोग भी वायलिन सीखना चाहेंगे तो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि जिस तरह आप युवानी को देख रही हैं वो बेझिझक इसमें कोई कठिनाई नहीं महसूस होती। तो चलिए इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए जारी रखेंगे। आज की

0: प्रोग्राम में आप सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं और हमारे साथ जिस तरह शुरू से मैं कहा हमारे साथ हैं उवानी राम खिलावन जो इंस्ट्रक्टर हैं वायलिन हिंदुस्तानी में और साथ में लेक्चरर हैं योगा मजूर में यहाँ महात्मा गांधी संस्थान में। और जिस तरह उसने बताया कि संगीत को आत्मा की भाषा, जहाँ संगीत को आत्मा की भाषा कहा जाता है और जबकि योग शरीर और मन और चेतना के बीच ऐसे स्थापित रखते हैं। और जब उवानी तुम लेक्चरर की हैसियत से योग इस मजूर में ज़्यादा कार्यरत है तो हम ये जानना चाहेंगे आपके अनुभव में, तुम्हारे अनुभव में संगीत और योग के बीच क्या संबंध है?
1: संगीत और योग के बीच बहुत गहरा संबंध है। जैसे योग शरीर श्वास और मन को एकाग्र करता है, वैसे ही संगीत भावनाओं ऊर्जा और चेतना को संतुलित करता है।
0: अच्छा, तो जैसे तुम बता रही हो कि और तुम जब ये काम कर रही हो साथ ही साथ संगीत सीखती है और योग के लेक्चरर होते, बहुत से लोगों को सिखाती, बच्चों को विद्यार्थियों को सिखाती है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कठिनाई नहीं होती ये मैनेज करने के लिए?
1: जी नहीं, कठिनाई नहीं होती है क्योंकि मेरा योग सीखने का समय अलग होता है और संगीत सीखने का समय अलग होता है, तो मुझे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है।
0: अच्छा, योग में कहते हैं कि हम लोग सब अभ्यास करना, जैसे यही है ये योग अभ्यास, या फिर क्या कह सकते हैं इस बारे में, योग है क्या?
1: योग एक संपूर्ण जीने की एक कला है, हमारे शरीर मन और आत्मा को बैलेंस रखता है।
0: जी,
1: तो जैसे कि कहते हैं समत्व योग उच्चते, भगवद गीता में ये कहा गया है।
0: अर्थात इसका मतलब क्या है?
1: अर्थात शरीर के साथ साथ मन को भी बैलेंस रखना आवश्यक है।
0: तो जैसे जितने अभी एमजीआई में तुम्हारी कितनी, बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं योग, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं योगा जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ये मतलब ये उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा सकते हैं, तुम्हारी जो विद्यार्थी कैसे क्या
1: नहीं, योग केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग युज शब्द संस्कृत शब्द से आया है और उसका मतलब है जोड़ना, मतलब इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल तक जोड़ना। ये कैसे करेंगे हमारे, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, पतंजलि योगा सूत्र में कहा गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, द कंट्रोल ऑफ द सेसेशन ऑफ द माइंड जैसे हम कहते हैं। तो अगर माइंड को हम कंट्रोल करेंगे तो शरीर भी कंट्रोल में आ जाएगा और सुप्रीम से जोड़ पाएंगे, सुप्रीम सोल से जोड़ पाएंगे।
0: और अगर योग करना है तो कोई निश्चित समय है, तब आप सवेरे को करना चाहिए या फिर शाम को, किस समय को योग का अभ्यास करना चाहिए?
1: मेरे लिए योग, हमें योग सवेरे अर्ली मॉर्निंग नाश्ता से पहले, सूर्य उदय के बाद, मतलब जब सूर्य का उदय होता है तब हमें करना चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, हम एनर्जेटिक रहेंगे।
0: फिर संगीत कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं योगा में?
1: हाँ, तो योग के क्षेत्र में मेडिटेशन आता है। जब भी हम मेडिटेट करेंगे तो एक सॉफ्ट म्यूजिक हम डाल सकते हैं जिसमें हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, सब ये सब भी योग के क्षेत्र में आता है।
0: मतलब अब अगर हम लोग ये मेडिटेशन करते समय ये कुछ म्यूजिक, मतलब हाँ, संगीत
1: सॉफ्ट
0: म्यूजिक हाँ, लगा, ये ज़्यादा स्मूथली हमारा जो योग हाँ, ज़्यादा ठीक ठीक तरह से होगा,
1: हाँ जी, हम ठीक से फोकस भी कर पाएंगे।
0: ओके, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कौन से पहलू जो हैं मन को शांत करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं?
1: राग, मतलब जैसे हमने म्यूजिक थेरेपी सुना है तो हर एक राग एक थेरेपी अपने में ही, एक थेरेपी होता है, हर एक राग का एक रस होता है, इमोशन।

0: इमोशंस होता है,
1: मतलब एक राग के जरिए,
0: राग के जरिए
1: ये जो, अगर ये राग मतलब जो भी म्यूजिक हम, चाहे वायलिन चाहे सितार, ये राग होना चाहिए,
0: ये राग होना चाहिए। हाँ,
1: और तुम्हारे जैसे अनुभव इस पर, जब तुम संगीत, जब तुम खुद वायलिन बजाती हो, तुम्हारा जो तुम्हारा अनुभव एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे कैसे महसूस करती हो तुम?
0: जब भी मैं वायलिन बजाती हूँ तो पहले जो भी स्ट्रेस होता था वो स्ट्रेस समाप्त होता है, कम होता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और वायलिन में ही एंग्रोस हो जाती हूँ, मेरा मन शांत रहता है और बस।
1: और मतलब अगर कोई ऐसे व्यक्ति तनाव से जुड़े हुए हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है अगर वो संगीत में अपने ध्यान लगाएं या फिर योग करें, अपने अभ्यास करें, तो उसके जो तनाव स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक जा सकता है, मतलब
0: जी हाँ,
1: उसके
0: काफ़ी हद तक जा सकता है। योग के माध्यम से कैसे तनाव कम हो सकता है, जैसे प्राणायाम हम कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम, हमिंग साउंड, जैसे कि हम शवासन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, इससे तनाव कम हो जाएंगे। और संगीत भी, जब हम म्यूज़िक, कई प्रकार के म्यूज़िक होता है, नॉइज़ी भी होता है, जो कम नॉइज़ी भी होता है, तो जब भी हम म्यूज़िक सुने, हमें पता होना चाहिए किस प्रकार का म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, किस प्रकार का संगीत हम सुन रहे हैं, तब भी
1: हमारी जो तनाव है वो दूर हो सकता, कम हो सकता है,
0: कम हो सकता है। हाँ,
1: और मान लीजिए अभी हमें लोगों को देख रहे हैं बहुत से लोग और बहुत ही लोग सुन रहे हैं, उन लोगों ने कभी मतलब योग का कुछ शुरू भी नहीं किया, ना ही संगीत काफ़ी प्रभावित है, तो तुम क्या कहना चाहोगे कि ये अगर वो लोग शुरू करें, फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए?
0: संगीत के लिए मैं यही कहूँगी,
1: कुछ ज्वाइन करना चाहिए, एक संस्था
0: में ज्वाइन कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि MJI में ही ज्वाइन करें, किसी भी संस्था में ज्वाइन कीजिए, संगीत सीखिए, और योग भी आप अपने एक गुरु ढूंढिए जिससे कि आप योग सीख सकें।
1: मतलब सिंगल नहीं कर सकते, एक एक, एक गुरु ज़रूरी है,
0: गुरु का होना ज़रूरी है,
1: ज़रूरी है, तभी ये हो सकता है।
0: जी,
1: और अगर योगाभ्यास के दौरान मधुर संगीत का प्रयोग किया जाए तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है हम लोगों के ऊपर में। और तुम्हारे लिए तुमने अपना वक्त कैसे निकाला, जैसे संगीत में भी हो और योग के भी, कैसे अपना समय निकाल दिया तुमने? और जब तुम पढ़ाई कर रहे थे काफ़ी हद तक अपनी पढ़ाई, मतलब HSC तक अगर मॉरिशस में देखा जाए तो, हाई सर्टिफिकेट करके, और आप मतलब डिग्री, डिप्लोमा, MSc, तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? कोई बोलते हैं कि समय ही नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया?
0: इसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जॉब नहीं करती थी, इसलिए मैं अपना समय मैनेज कर पाई। अगर मैं जॉब करती तो मुझे
1: मतलब ये कुछ कठिनाई
0: होती। हाँ, तो जॉब ना करने से मैं मैनेज कर पाई दोनों, संगीत और योगा दोनों।
1: और अगर अभी तुम जॉब में लग जाओगी, मतलब तुम जो करती है, तो ऐसे इस टाइम में तुम प्रैक्टिस कर सकती हो घर पर, या फिर कुछ टाइम निकाल सकते हो अपना मतलब अभ्यास करने के लिए?
0: हाँ, मैं निकाल सकती हूँ। योग करने के लिए हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, मैं ज़्यादा अर्ली नहीं कहूँगी, मैक्सिमम 5 बजे, मैं 5 बजे उठती हूँ और अपना योग अभ्यास वगैरह करती हूँ।
1: और संगीत के लिए?
0: संगीत के लिए तो कोई
1: किसी भी टाइम,
0: किसी भी टाइम,
1: किसी भी टाइम कर सकते हो। और तुमने ये सारा कुछ, अब जैसे हमारे जो सोसाइटी, समाज के लिए तुम क्या ऐसे संदेश दे सकते हैं कि दोनों, मतलब संगीत और योगा, ये दोनों आप लोग अपनाएं, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोगों के जीवन शैली, हम लोगों के जो काफ़ी स्ट्रेसपूर्ण होता है हमारे ये सोसाइटी में, कभी कभी ऐसे देखते हैं जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उतना वो लोग इसमें लगाव नहीं लगाते, तो क्यों, क्या कहना चाहोगे कि कैसे करें?

0: बोलो। एक उदाहरण तो तुम ही को ले सकते हो, लेकिन तुम क्या कहना चाहोगी अपने लोगों को?
1: मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, संगीत में किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, चाहे गायन हो, इंस्ट्रूमेंटल हो या नृत्य हो, अगर आप सीखना चाहेंगे तो ज़रूर सीखें। किसी भी संस्थान में जाकर एनरोल कीजिए, सीखिए। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग कीजिए और स्वस्थ रहें, और शरीर और मन दोनों को बैलेंस रखें।
0: अच्छा, तुमने कहा स्वस्थ रखें। योग सचमुच एक ऐसी विधा है जैसे ऐसे जो जहाँ एक व्यक्ति अपने आप को, अगर बीमार है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं योग कर करें तो?
1: हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन एक योग, जैसे कि मैंने बोला, अगर एक बीमार व्यक्ति योग करना चाहेंगे तो अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, एक गुरु होना आवश्यक है।
0: चाहे जो भी बीमारी, मतलब कोई कोई बीमार होता है वो बोलेंगे कि नहीं मैं ये कुछ नहीं, और ये ज़रूरी है कि हम लोग नीचे बैठें और ये योग करें या फिर?
1: जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। चेयर योगा भी होता है, आप चेयर पर भी बैठ करके योग कर सकते हैं, अपने बेड पर भी बैठ करके योग कर सकते हैं, कहीं भी आप योग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही बैठना है या फिर खड़ा होना है, ये ज़रूरी नहीं है।
0: जी ज़रूरी नहीं,
1: नहीं
0: है। और खाने के मामले में जब योग करते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग खा, मतलब कुछ खाया और तुरंत योग कर सकते
1: नहीं,
0: हैं? नहीं
1: जी नहीं। अगर आपको योग करना है तो 2 या 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। फिर योग के बाद तुरंत ही नहीं खाना है, 30 मिनट के बाद, मतलब 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद आप खा सकते हैं या 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं।
0: अच्छा, अपने अनुभव से बताएं कि अपने एक्सपीरियंस के तौर पे तो कहाँ कहाँ अपना जो मतलब प्रदर्शन किया, या सिर्फ मॉरिशस ही में ही, या कहाँ कहाँ पर जाकर के किसी के सामने एक मतलब मंच पर तुमने अपना वायलिन वादन किया?
1: मैंने अपना वायलिन वादन मॉरिशस में ही किया है, ज़्यादातर मॉरिशस में ही मैंने शोज किए हैं।
0: और कहाँ कहाँ पर बता सकती हो?
1: मॉरिशस में सबसे पहले तो MGI में ही, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, वहाँ पर भी मैं एक पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी शोज़ करने को मिला। एक रिकॉर्डिंग भी मैंने यहीं पर MBC में ही किया था, एक भजन ग्रुप के साथ।
0: अच्छा, और जब तुम वायलिन के जैसे बजाती हो, खेलती हो, तो सिर्फ शास्त्रीय संगीत, मतलब शास्त्रीय संगीत के हिसाब से तुम ये खेलती हो, या फिर बॉलीवुड गाने भी तुम?
1: मैं बॉलीवुड गाने भी बजाती हूँ, सेगा भी बजाती हूँ, भोजपुरी गाने भी बजाती हूँ मैं।
0: अच्छा, वायलिन के साथ सेगा भी?
1: हाँ,
0: बॉलीवुड गाने, मतलब जिस जैसे धुन धुन धुनें होती वो निकाल सकती हो तुम?
1: जी बिल्कुल।
0: दुर्भाग्यवश हमारे साथ अब आज तुम अपनी वायलिन लेकर नहीं आई, फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो MBC में शायद कोई प्रोग्राम ज़रूर तुम कर सकती हो। और अगर बॉलीवुड गाने में किस तरह के गाने, कैसे तुम सुन करके वो गाना तब धुन निकालते, क्या कैसे करती हो तुम?
1: बॉलीवुड गाने का मेरा मतलब है, मुझे ज़्यादातर ऑल इज़ गोल्ड पसंद है, पुराने गाने पसंद है। मैं गाने को सुनती हूँ दो तीन या चार पांच बार मैं सुनती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ, अपने खुद कंपोज करती हूँ नोट्स।
0: अच्छा।
1: फिर बजाती हूँ।
0: मतलब कोई गाना बजता है तो उसके हिसाब से तुम सुन करके उसका नोट्स निकाल सकती है? मतलब जैसे नोट्स तो सारे गामा ये सरगम तो होता है, तो उसके हिसाब से मतलब सीखा है तुम्हें?
1: हाँ।
0: जैसे सुन करके जान जाता है कि ये यहाँ तो सिपा ऊंच पीछे है, या फिर इसके हिसाब से अब तक तो तुम सीख गई होंगी?
1: हाँ जी।
0: डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए?
1: मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है।
0: अच्छा, जब बॉलीवुड के गाने हमने सीख रखी, बॉलीवुड के बारे में तुम बॉलीवुड कौन से, मतलब पुराने गाने तो पसंद करते हो, और तुम गाती भी हो?
1: नहीं मैं नहीं गाती हूँ।
0: नहीं गाती नहीं गाती। और तुमने अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि चलो मैं भी जैसे दूसरे लोग नृत्य सीखें, या तबला बजाएं, या फिर सितार बजाएं?

0: जब मैंने अपना डिप्लोमा किया था वायलिन में, तब उसमें एक मॉड्यूल था तबला, तब थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा तबला। और नृत्य के बारे में मैं कहूँगी कि जब मैं सरगम अकादमी ऑफ म्यूज़िक एंड डांस जाती थी काठरोबोन जब मैं छोटी थी, तो वायलिन के साथ साथ मैंने डांस भी थोड़ा सा सीखा है, मतलब भरतनाट्यम सीखा है थोड़ा सा। और जब मैं स्कूल जाती थी मेरे कॉलेज में कथक डांस सिखाया जाता था, वो भी थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा।
1: तब संगीत के इर्द गिर्द में ही रह चुकी हूँ तुम
0: जी।
1: और जब हम लोग बात कर रहे हैं, तुम अपनी जो वायलिन का जो प्रैक्टिस है, तुम अकेली करती है या फिर तुमको किसी अकम्पनी में, जैसे सितार में जानते हो कि जब सितार तो एक तबला वादक होना चाहिए कि तब ये प्रैक्टिस होता है, क्या तुम भी?
0: हाँ, वायलिन में भी अकम्पनीमेंट का होना आवश्यक है।
1: क्यों ये अकम्पनीमेंट ज़रूरी है?
0: क्योंकि संगीत में एक भाग आता है ना लय, तो हम जब लय के साथ ये इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होता है, ये जो धुन हम बजा रहे हैं ज़्यादा सुंदर हो जाता है लय के साथ।
1: हाँ। अच्छा, अगर मतलब कुछ लोग शुरू करना चाहते हैं संगीत सीखने के लिए, जैसे शुरुआत में तुमने कहा कि कोई भी संस्था ज्वाइन करना है, तुम्हारे पास क्या सुझाव है, क्या देंगे अगर शुरुआती लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे, क्या सुझाव देंगी तुम उन लोगों को, क्या स्टेप क्या क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो शुरुआती लोगों को अगर प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहेंगे किसी इंस्ट्रक्टर से, तो इंस्ट्रक्टर को कॉन्टैक्ट करें, उनके पास जाएं और सीखें, तब किसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं।
1: और अगर वो जो व्यक्ति उनमें ये संगीत या योग में दिलचस्पी हो तो
0: जी,
1: अगर दिलचस्पी नहीं है तो वो मतलब कुछ भी सीखने का तो मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा
0: जी,
1: क्या कहते हो इस पर तुम? ज़रूरी है कि इसमें तो दिलचस्पी होना चाहिए। और अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे कुछ ऐसे गुनगुनाते हैं घर पर, ये भी संगीत है ना या फिर नहीं?
0: कहा जा सकता है
1: लेकिन इसका पूरा जो मतलब संगीत का जो सचमुच उसका मतलब, उसका अर्थ, ये सीखना ही जरूरी
0: सीखना जरूरी है।
1: हाँ। तो और एक ब्रेक लेते हैं, तब अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फैजन से गुजारिश है, एक गाना चलाएं।

0: जहाँ हमारे साथ प्यारी सी उवानी राम खिलावन हैं, जो मतलब शास्त्रीय संगीत में काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं और योग के लेक्चरर भी हैं, और ख़ास करके वो वायलिन बजाती हैं। ये हमारे लिए सचमुच बहुत ही मतलब अच्छी बात आई है। और हम योग और संगीत की चर्चा कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। ये दोनों विधाएं एक साथ जब आती हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक श्रोता को जरा सुन लेते हैं। उवानी
1: जी,
0: हेलो। हेलो
2: हेलो हेलो, नमस्ते अनुराधा दीदी, मैं कोटे से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: आशा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस संगीतमय प्रोग्राम में। आप बताइए कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ, और आज के इस संगीतमय वातावरण में आप जो विषय लेकर आए हैं उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारी अतिथि आई है
0: जी,
2: उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ।
1: नमस्ते।
2: उनको उनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला
0: जी। बहुत धन्यवाद आशा जी।
2: हाँ जी, तो मैं भी एक दो शब्द जोड़ना चाहती हूँ आज के विषय अनुसार।
0: बेशक बेशक
2: जी। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि संगीत जीवन है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संगीत और योग का होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या मन उदास है तो संगीत हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने मन स्थिति से उभर सकें। और जैसे कि थोड़ा सोचिए, संगीत तो प्रकृति के कण कण में है।
0: बिल्कुल।
2: जब हम सुबह उठते हैं तो चिड़ियों का कलरव करना, जैसे सन सन पवन का बहना, जैसे सूरज की किरणों में, फूलों की खुशबू में जब पत्ते की ससराहट होती है, तो ये जब ये सब हमें ये दर्शाता है कि संगीत हमारे चारों ओर है, हम संगीत के बिना रह ही नहीं सकते। जरा सोचिए, एक घर में अगर संगीत ना हो, रेडियो ना बजे, गीत संगीत ना हो, तो वो घर तो शमशान की तरह लगेगा।
0: बिल्कुल आशा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
2: ऐसा लगेगा कि घर घर नहीं है, घर खंडर है। तो इसलिए कहती हूँ, संगीत वो शक्ति है, भले उसमें शब्द न हो, उसे हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, आपको सब आता है। नहीं नहीं, आप भले आप गाना नहीं जानते हो, नाचना नहीं जानते हो, पर उस संगीत का अनुभव करके, संगीत को अपने अंतर मन में उतार के आप अपने कोई भी काम को करते करते, गुनगुनाते हुए करते हैं, तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। आपका जीवन, आपका यानी कि जो दिनचर्या होता है वो एकदम अच्छा जाता है। अब मैं अगर पहले के ज़माने की बात बोलूँ, तो पहले के ज़माने में जो हमारे पूर्वज, वो पहले तो टीवी रेडियो की सुविधा
0: नहीं थी,
2: पर वो

0: ऐसे अपने काम को करते थे,
1: बिल्कुल
0: गाते गुनगुनाते। और कभी कभी एक लस्सी मिली तो उसमें छेद बनाकर उसे बांसुरी बनाकर बजाते थे। तो मैं यही कहूंगी माँ शारदे की जो आशीर्वाद हमें मिला है और कृष्ण की बांसुरी से जो हमें जो शिक्षा मिली है वो यही सिखाता है कि संगीत के द्वारा हम प्रेम की गंगा बहाते चलिए और योग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर से और बेहतर बनाए रखें। बस
1: आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायक संदेश के लिए और युवानी भी बहुत खुश हैं आपके इन शब्दों को सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात इस प्रोग्राम में। क्यों युवानी, अब जो आशा ने कहा बहुत बिल्कुल सही है ना?
2: जी हाँ बिल्कुल सही कहा। संगीत और योग दोनों को जोड़ करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम खास करके मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की म्यूज़िक हम लोग सुन रहे हैं।
1: एक और श्रोता को ज़रा सुनते, दीपशिखा ने इशारा किया है। हेलो
3: हेलो अनुराधा जी और मेहमान जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम हम जान सकते हैं?
3: प्रभा।
1: प्रभा जी स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आप?
3: बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी, आज मौका मिल गया। और संगीत और योगा के बारे में कह दूं कि अगर ये दोनों साथ साथ है तो मानो सोने में सुहागा हो जाते हैं।
1: सचमुच।
3: और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने योगा सीखी है गुरु, इंडियन गुरु में से। और हमारे यहाँ भी सीख रही थी एक मॉरिशन से। और कभी कभी मुझे मौका भी मिला चिल्ड्रन से योगा सिखाने के लिए। और हमेशा मैं जब भी मौका मिलती है मैं करती हूँ। और संगीत के बारे में क्या कहूँ, ये तो मेरे
1: आप संगीत की दीवानी तो हैं ही।
3: संगीत और रेडियो के बिना मैं जी नहीं सकती।
1: आप इसी तरह अपना जो संगीत सुनते रहिएगा और अपना जो योग अभ्यास वो करते रहिएगा, आपका स्वास्थ्य और आपके मन की शांति के लिए ये बहुत ही जरूरी है। प्रभा जी
3: एक लाइन अगर टाइम है।
1: जरूर जरूर बताए।
3: गीत है ये जिंदगी, गीत है ये जिंदगी, गुनगुनाते और गाते चले चलो चले चलो। धन्यवाद
1: दोनों को। धन्यवाद प्रेरणा जी, बहुत बहुत प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: आपको भी शुभ दिन। आप
1: शुभ दिन। शुभ दिन आपको भी। तो वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रही है उवानी, आपके अनुसार है मानसिक शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र क्या है? कोई मंत्र है जो हम लोग कर सकते हैं ताकि हम अपनी जिस अपने आप को शांत रखें?
2: ओम शब्द का उच्चारण। ओम शब्द जब हम तीन भागों में विभाजित करते हैं अ उ और म, तो इसका उच्चारण करेंगे अ उ और म तो मानसिक शांति मिल सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कुछ शब्द जोड़ना चाहेंगी, कोई संदेश? और आपको आप जानती हैं कि इस रविवार को हम मतलब संगीत वर्ल्ड म्यूजिक डे, साथ में वर्ल्ड योगा डे और यहाँ मॉरिशस में पितृ दिवस भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो आपके पापा आपके साथ आए हुए हैं आपको लेकर, हाँ। क्या है कुछ शब्द अपने माता पिता के लिए बोलना चाहेंगी आप?
2: मैं बस अपने माता पिता से यही कहूँगी कि मामा एंड पापा आई लव यू अ लॉट, मैं बहुत प्यार करती हूँ आप दोनों से और जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ मामा और पापा की वजह से ही हूँ।
1: अच्छा, एक अंतिम शब्द आप कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में?
2: मैं खास करके बच्चों को ये संदेश, बच्चों और उनके माँ बाप को ये संदेश देना चाहूँगी कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को संगीत और योग सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें और ख़ास करके योग। योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हर रोज़ योग रोग को भगाएंगे, बस यही कहना चाहूँगी।
1: वाणी राम खेलावान जी को इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज की चर्चा से ये समझ में आता है कि संगीत और योग केवल कला और अभ्यास नहीं बल्कि मन शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रभावशाली माध्यम भी है। तो प्यारी सी वाणी राम खेलावन को बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ में हमारी जो टीम है नीज

0: हम फैज़न और दीपशिखा को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे और जितने श्रोताओं ने हमारे इस प्रोग्राम को सुना, भाग लिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार।

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गए विद हिमा, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। बजट से एक दिन पहले कोगान पहापे ने ईंधन की कीमतों और टैक्स व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपये की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक कर लगाकर किया जाए। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में VAT और ईंधन करों का बोझ आम परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है। वहीं ओनावो मोहिस के नेता पैट्रिक बेल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम टैक्स के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बजट 2026-2027 से एक दिन पहले श्रमिक संघों ने सरकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपील की है। GWF के अश्विन गुदे ने कहा कि पिछले बजट के कई उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, जबकि मॉरिशस लेबर कांग्रेस के हनीफ पिरन ने कीमतों पर नियंत्रण, रुपए की स्थिरता और सामाजिक सहायता बढ़ाने की मांग की। बजट से पहले चीनी क्षेत्र ने भी अपनी उम्मीदें जताई हैं। MCIA का लक्ष्य 2029 तक चीनी उत्पादन बढ़ाकर 2.5 लाख टन करना है, जिसके लिए अभी से निवेश जरूरी है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को कम से कम 210 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी।

0: जलाशयों में पानी का स्तर घटने के कारण आज से महुआ क्वा जलाशय से जुड़े कई इलाकों में नए जल वितरण समय लागू कर दिए गए हैं। वाक्वा क्यूपिप काट्रोबोन बोबासें रोजिल मोका और सैंपिया सहित कई इलाकों में अब पानी केवल 5 से 6 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होगा। और विदेश में यूक्रेनी ड्रोनों ने इस सप्ताह दूसरी बार मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जबकि रूस ने कीव पर मिसाइलें दागी। इस बीच राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की शांति समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका और यूरोप से समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। मॉस्को के मेयर ने बताया कि गुरुवार को मॉस्को ने 5 दर्जन से अधिक ड्रोनों को मार गिराया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रुपे पीनिया कोटेज में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयंती रामलोखन पैदाइशी नाम तुपसी और जो विद्यामु जिस नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर रुपे पीनिया कोटेज से उठाकर बेलमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शिवाला रोड मर्द स्थालिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर लाल सिरतन जो पोल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रानी सिरतन के घर शिवाला रोड मधुस्थालिया से उठाकर बोसोंश की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी रागादू पैदाइशी नाम तुमादू और जो रागिनी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके पति श्री वैतिलिंगम रागादू के घर पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। आयासामी लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाक्वा में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकंती निपुल पैदाइशी नाम अर्जुन और जो बेबी लता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके पति श्री विजय निपुल के घर आयासामी लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाक्वा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: राधा के सो

चलिए श्रोताओ, 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति धारा। भक्ति की धारा बहने जा रही है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। तो चलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा की तरह चंद भक्ति गीत, और आज आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश के शुभ अवसर पर आप एक विशेष कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से आप सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, भगवान गणेश जी का नाम लेकर। और कहते हैं, भक्ति वह दीप है जो अंधकारमय जीवन में आशा और विश्वास का प्रकाश फैलाती है। तो चलिए, इसी सोच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।

चलिए श्रोताओ, भक्ति की धारा बह रही है रेडियो मॉरिशस पे और चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान आपकी सेवा हम करने वाले हैं। गुरुवार का दिन है आज और आज का दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है कि हम भगवान हरे विष्णु की पूजा अर्चना करें और उनके अनेकों रूप को हम पूछते हैं आज का दिन। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सभी सुनने वालों के नाम हम करने वाले हैं।

श्रोताओ, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ जीवन में आनंद और शांति का वास है। और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में आप इस मेलजोल, प्यार, मिठास जो है, अपनापन जो है, सभी के साथ जो है हमें बांटना चाहिए, और हमें कर्म करते रहना है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना है। तो चलिए, इसी सोच के साथ कार्यक्रम को हम जारी रख रही हैं।

चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं और समय हुआ है हमारे खास प्रोग्राम का, विशेष कार्यक्रम जो है सत्यात प्रकाश के संदर्भ में। ये कार्यक्रम जो है आर्य सभा की ओर से प्रसारित किया जा रहा है।

0: समस्त श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। स्वागत है आज का इस भक्ति धारा कार्यक्रम में। आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं स्वयं मैं पंडित कविराज खेदू और श्रद्धेया पंडिता आरती पोपिया जी। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस भक्ति धारा कार्यक्रम में। आज का विषय है हमारा सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित जो सातवां समुल्लास है। और हमारे जो मुख्य वक्ता है पंडिता आरती पोपिया जी अपना संदेश इस सप्तम समुल्लास पर आधारित ईश्वर तथा वेद पर आप लोगों को सुनाने जा रही है। चलें हम सुनते हैं पंडिता जी को।
1: धन्यवाद। ॐ यस्माद् ऋचो अपतक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन्।

शाम। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को सादर नमस्ते। मैं पंडिता आरती पोपिया आर्य सभा मॉरिशस की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा संदेश सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुलास अर्थात वेद और ईश्वर पर है। उपर्युक्त मंत्र अथर्वेद का है। मंत्र में पूछा जा रहा है कि जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं,

कतमः स्विदेवसः, वह कौन सा देव है? इस प्रश्न का उत्तर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में सपर्यगाच्छुक्रम अकायम के माध्यम से बताया गया है कि जो अनंत शक्तियुक्त, अजन्मा, निरंतर, सदैव मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि रूप ब्रह्म, जो कि कल्प के आरंभ में जीवों को वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश न किया होता तो कोई भी विद्वान न होता, तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को न भोगने का सामर्थ्य होता। इस कारण इसी ब्रह्म की सर्वदा उपासना करनी चाहिए। इसका समर्थन करने हेतु यजुर्वेद का मंत्रांश प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुधा विजायते में स्पष्ट है कि वह ईश्वर जो प्रजा का पति अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, वही जर और चेतन के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप हो रहा है, शरीर की सभी कोशिकाओं में विद्यमान है, तो कहीं पर अवतरित होना अथवा आने जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। वही इस जगत का रचयिता है, पालन पोषण करता है और प्रलय भी करता है। श्रोताओ, अपानिपादो जवनो ग्रहिता उपनिषद का वचन बताता है कि बिना हाथ, पग, चक्षु, श्रोत्र अर्थात शरीर, ईश्वर सब जगत को जानता है। अंतर्यामी अर्थात अंतःयामी सभी के भीतर व्यापक होकर सभी को नियंत्रित करता है। प्रिय श्रोतागण, अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किन के आत्माओं में कब वेदों का प्रकाश ईश्वर ने किया है? शतपथ ब्राह्मण का सूत्र है, अग्निर्वा ऋग्वेदो जायते वायुर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः, अर्थात प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों के आत्माओं में एक एक वेद का प्रकाश किया, क्योंकि ये चार ही जीवों में सबसे अधिक पवित्र आत्मा थे, अन्य नहीं। एवं पक्षपात रहित ईश्वर ने वेदों को वैदिक संस्कृत में ही प्रकाशित किया, जिससे कि सब देशवासियों को समान परिश्रम करके इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे मनुष्य अपने मन में अनेक विचारों को उत्पन्न करता है और शांति से शब्दों को सुनकर योजनाएं बनाता रहता है, वैसे ही अकाय निराकार परमात्मा उन ऋषियों के मन में वेद ज्ञान को प्रकट किया। जिस प्रथम मनुष्य को इन चार ऋषियों ने पढ़ाया वह ब्रह्मा कहलाया। तत्पश्चात जब योगियों और ऋषि मुनियों ने मंत्रों के अर्थों को जानने की इच्छा की, तब समाधि अवस्था में ध्यान करके मंत्रों के अर्थ प्रकट किए। जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को प्रथम हुआ, उस मंत्र के अर्थ के साथ ऋषि का नाम स्मरण हेतु लिखा गया। ऋषयो मंत्र दृष्टया मंत्रान संप्रादुः। इसी से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है कि सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान अवच्छेदात, परमात्मा हमारे प्रथम गुरु हुए और यदि हम न पढ़े तो अविद्वान ही रह जाएंगे, क्योंकि जीव सुषुप्ति और प्रलय अवस्थाओं में ज्ञान रहित हो जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने की यह परंपरा आदि सृष्टि से चली आ रही है। श्रोताओ, अब तीसरा प्रश्न है कि वेद नित्य है वा अनित्य है? वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद नित्य, सनातन एवं शाश्वत है। वैशेषिक दर्शन में गौतम ऋषि बताते हैं कि नित्य पदार्थ के गुण भी नित्य हैं। जब परमात्मा नित्य है तब उसके ज्ञान आदि

0: गुण सर्वदा एक रस बना रहता है, परंतु जो वेद की पुस्तक पत्र और स्याही से बना है वह अनित्य है। ये संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होते हैं, किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं। पुस्तक के नष्ट हो जाने से ये हमेशा सदा अखंड एक रस ही से आकाश में सर्वत्र भरे रहते हैं। प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु ईश्वर के ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं बीजांकुरवत, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्ष रूप होकर फिर बीज के भीतर रहता है। इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, इसीलिए वेद को नित्य ही जानना चाहिए। अभाव से कुछ भी बनाना असंभव है, जय के बिना नहीं होता। गायत्रादि छंद, षड्जादि और उदात अनुदात आदि स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्रादि छंदों के निर्माण करने में केवल सर्वज्ञ परमात्मा में ही यह सामर्थ्य है। प्रिय श्रोतागण, जैसे माता पिता अपनी संतानों का सुख चाहते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा सब मनुष्यों के सुख के लिए वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे कि वे अविद्यांधकार ब्रह्म जाल से छूटकर विज्ञान स्वरूप वेद को प्राप्त होकर सदैव आनंद में रहे। परंतु जब उवत सायन महिधर आदि भाष्यकारों ने वेदों के पवित्र ईश्वर युक्त ज्ञान का अनर्थ तथा मूलार्थ और सनातन वेद व्याख्यानों से विरुद्ध अर्थ किया, तो विदेशी लोगों ने इनके अश्लील और अतार्किक अर्थों को पढ़कर कहने लगे कि वेद जंगलियों की पुस्तक हैं, वेद गरेरियों की गीत हैं। धन्य है महर्षि दयानंद जी को, जो लुप्त हुए इस वैदिक संपत्ति से हमको दोबारा जोर दिया और जो आज दुनिया में वेदों का डंका बज पा रहा है, तथा नासा जैसे साइंटिस्ट लोगों का संस्थान वेदों पर शोध कर पा रहे हैं, इसका श्रेय स्वामी जी को जाता है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को कोटिशः धन्यवाद। वेद की ज्योति जलती रहे। इति ओम शांति।
1: श्रोताओं, अभी अभी आप लोगों ने श्रद्धेय पंडिता आरती पोपिया जी को सुना। इन्होंने अपने शोधपूर्ण कार्य को आप लोगों के समक्ष रखा। आशा करते हैं कि आप लोग इनसे लाभान्वित हुए होंगे। सप्तम समुलास में जो जितने भी तथ्य थे इन्होंने विस्तारपूर्वक समझाया ईश्वर सिद्धि के बारे में, और प्रमाणों से ईश्वर सिद्धि किस प्रकार से हो सकता है। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, और ईश्वर की स्तुति किस प्रकार से हम करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना अपने और एक ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद भाष्य भूमिका कहते हैं उसमें उपलब्ध है, उन्होंने बताया, और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, द कमेंटरीज ऑफ द वेदास। और अभी इस मास में जिस ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश, अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। इंग्लिश में लाइट ऑफ ट्रूथ, फ्रेंच में भी है, और अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। जो विस्तार से इन विषयों को जानना चाहते हैं वो अवश्य सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को अपने घर में पढ़ें। बच्चों के लिए भी बाल आर्य सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध है, जो घरों में बचपन से अगर हम बच्चों को सत्य के बारे में सिखा दें तो बच्चे जो है वो सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम माता पिता तथा गुरु संस्कार डालते हैं बच्चों पर, वही संस्कार लेकर वे लोग बड़े होते हैं। प्रार्थना विषय, उपासना विषय, प्रार्थना हम किस प्रकार से ईश्वर की करें, और ईश्वर की जो सगुण और निर्गुण जो उपासना है किस प्रकार से हम करें, ईश्वर को कभी ईश्वरीय विषय को लेकर देखते हैं।

0: सर्वस्व झगड़ा होते रहते हैं। धर्म कहता है ईश्वर एक है, और जितने भी अलग मत मतांतर हुए वो अलग अलग ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं। महर्षि जी सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास के अनुभूमिका सब प्रिफेस में वहाँ पर प्रकाशित करते हैं, दर्शाते हैं कि 5000 वर्ष पहले इस संसार में केवल एक धर्म था, और वो था वैदिक धर्म। और महाभारत युद्ध के पश्चात जहाँ पर विद्वानगण इस झगड़े में, उस लड़ाई में जहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो गए, विद्वानगण जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो जो लोग थे अपने अपने प्रकार से अलग अलग मतों का निर्माण किया। धर्म एक है, सब मनुष्य के लिए बराबर है, परंतु मत मतांतर केवल जिसको हम सेक्ट कहते हैं एक प्रकार के मनुष्य के लिए है। तो इस प्रकार से मत फैलते गए, मत मतांतर फैलते गए, अनेक मत जो है, जो सेक्ट है अभी उपस्थित है। तो इसी को सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के जो समुल्लास जो है, 11वें समुल्लास, महर्षि जी वहाँ पर समझाते हैं, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो श्रोताओं, जैसे कि अभी पंडिता जी ने कहा कि पाश्चात्य विद्वानों ने जो गलत भाष्य किए, तो उसको सुधारने के लिए महर्षि दयानंद जी को सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भाष्य भूमिका अनेक ग्रंथ लिखने पड़े और अनेक सुंदर भाष्य करना पड़े। यही हमको पढ़ना है, और इन्हीं सब विचारों को हमें आचरण में लाना है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे विद्वानों से कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ घर घर में फैले, समाज समाज में जाए, और इस अमर ग्रंथ को हम ऋषि दयानंद सरस्वती जी को कृतज्ञता प्रकट करने हेतु हम उसका जो प्रसार प्रचार है हम सब मिलकर करें। श्रोताओं, आप लोगों ने ध्यान से सुना, हम आप सभी को धन्यवाद समर्पण करते हैं, खासकर जो हमारे टेक्निकल सहयोगी हैं अंजू लक्ष्मण जी को और श्रद्धेय पंडिता जी को। पंडिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। ओम शम।
1: चलिए श्रोताओं, अभी आप आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे, और हम पंडित खेडू जी को धन्यवाद देंगे। तो चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे स्टूडियो की घड़ी में 10:45 जो है हो चुके हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये अगला भक्ति गान जो है आप सुन पाएंगे। गुरुवार का दिन है जहां हम भगवान विष्णु को पूजते हैं, तो साथ में हम माँ लक्ष्मी को भी पूजते हैं। तो चलिए ये अगले भजन की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। 10:50 हुए हैं। गुरुवार का दिन भला हम साईं बाबा को कैसे भूल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है आज का दिन उनको पूछते हैं, और साईं बाबा जो है वो हमें सही राह पर जाने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए, हमें श्रद्धा और सबूर के साथ जो है आगे बढ़ना है। यही सीख हमें साईं बाबा से मिलते हैं।

0: चलिए श्रुत्याओ,
1: हम कार्यक्रम के अंत तक का पहुंचे हैं। सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में सुन पाएंगे। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सभी को मैं कहूँगी शुभ दिन। वैसे हमारी मुलाकात जो है कल से फिर हो रही है इसी चैनल पे, दिन के 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस एक बार फिर से।

0: स्टूडियो में आ गए विद्यमान लेखक संक्षिप्त समाचार, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। पेश है संक्षिप्त समाचार। बजट से एक दिन पहले कुगानपाहा पर ने ईंधन की कीमतों और कर व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपये की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक टैक्स लगाकर किया जाए। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में VAT और ईंधन करों का बोझ आम परिवारों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है। वहीं ओनावो मोरिस के नेता पैट्रिक बेल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम कर के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बजट 2026-2027 एक दिन पहले श्रमिक संघों ने सरकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपील की है। GWF के अश्विन गुदे ने कहा कि पिछले बजट के कई उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, जबकि मॉरिशस लेबर कांग्रेस के हनीफ पिरन ने कीमतों पर नियंत्रण, रुपए की स्थिरता और सामाजिक सहायता बढ़ाने की मांग की। जलाशयों में पानी का स्तर घटने के कारण आज से मऊ वाकवा जलाशय से जुड़े कई क्षेत्रों में नए जल वितरण समय लागू कर दिए गए हैं। वाकवा, क्यूपिप, कट्रोबोन, बुबासै, रोज हिल, मुका और सैपिया सहित कई इलाकों में अब पानी केवल 5 से 6 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होगा। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे एशियाई शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वहीं तेल बाजार में भारी गिरावट देखी गई। अमरीकी कच्चा तेल गिरकर $74.70 और ब्रेंट क्रूड गिरकर $77.70 प्रति बैरल पर आ गया है, जो पिछले 3 महीनों का सबसे निचला स्तर है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Shamme Farooza.

तौबा ऐसा अंदरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ले खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुभाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द मौलाना जुनैद अहमद खान अशरफी साहब का बयान नातु सलाम और आपके पैगाम 5251-7005 के ज़रिए आप हमें अपने पैगाम भेज सकते हैं। ताखिर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून, कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बे इंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है।

तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रस्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं।

और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कसमें खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बकील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है, इस सबब से कि माल और बेटे रखता है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने

हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी जब उन्होंने कसमें खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती।

फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए।

एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुक करके मलामत करने, कहने लगे, हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो, अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते।

परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है? क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आए।

जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे।

सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरा दांव बड़ा मजबूत है।

0: और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है।
1: सदाकुल्लाहुल अज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा और जिस जिस ने इस तिलावत में हिस्सा लिया उन सबको इसका सवाब अता फरमा।

प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। हमें अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करते रहना चाहिए।

0: मौजे सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:24 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है, जून की 18 तारीख है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम। आज मुहर्रम की 2 तारीख है। अब आप समात फरमाएंगे खतीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, और आपको बताते चलें कि 5251700 पर आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं।
1: नहमदु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अलैहिम अजमाईन अम्मा बाद। फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بن تصلي عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़िलहिज्जा के मुक़द्दस महीने से फ़ारिग होकर इस्तक़बाल शहर मुहर्रमुल हराम में आ रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना बहुत कुछ अपने साथ पैगाम दुनियावी और उख़रवी दोनों दे रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना जो क़ुरबानी से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा का मुक़द्दस महीना जो क़ुरबानी पर ख़त्म होता है, मोमिन को और मुसलमानों को ये सोचना चाहिए हमारा इस्लामी साल का पहला महीना क़ुरबानी से है और साल का आखिरी महीना क़ुरबानी पर ख़त्म होता है।

यानी हम लोगों की ज़िंदगी दो क़ुरबानियों के दरमियान है। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला वर्दाहु अन्ना व अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी प्यारी और बहुत सबक आमोज है, और बारगाह इमाम आली मकाम में हज़रत सैयदना ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रदियल्लाहु ताला ने क्या खूब कहा। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिना ला इला अस्त हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुख्तसर से वक्त में हम आपको शहीद का मतलब और माना समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हमारे सामने 12 रोज़ा प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम का है। वो इस तरह 12 रोज़ा प्रोग्राम कि योम आशूरा तक हम फ़ज़ाइल अहले बैत मनाक़िब अहले बैत शहादत बयान करते हैं, और दो दिन मा बाद शहादत क्या हुआ कूफे से करबला की ज़मीन से काफ़िला कैसे रवाना हुआ और कैसे मदीना पहुंचा, और फिर अल्लाह ने ज़ालिमों पर कैसा अपना अज़ाब डाला, ये भी बयान किया जाता है और बयान करना चाहिए। अफसोस से कुछ अहले इल्म या तो करबला के बाद जो हुआ उसे जानते नहीं हैं, या जानबूझकर इन यजीदियों पर क्या अल्लाह का अज़ाब आया बयान नहीं करते। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मौला ताला हर सुनी सही अकीदा आलिम को जहाँ शहादत इमाम आली मकाम बयान करते हैं वहीं पर शहादत के बाद क्या हुआ वो भी बयान करना चाहिए। तो सबसे पहले शहादत इमाम हुसैन के बारे में बराए रास्त गुफ्तगू करने से पहले हम शहीद के माना क्या है और शहीद किसे कहते हैं। शहीद के बहुत से माने हैं और कुरान हकीम में बहुत सी जगहों पर शहीद के माने को इस्तेमाल किया गया, जैसे इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा की आयत मुबारका है, ऐ बनी इसराइल क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत हाजिर हो गई, यानी वो करीबुल विसाल थे। इस आयत मुबारका में शुहदा का मसदर शुहूद हाजिर होना है के माने में है। कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका कुछ यूं है, अम कुम तुम शुहदा इज हज़र याकूब अल मौत। इसी तरह हम हफ्ते में एक दिन दो दिन अपने तजर्बे में और हर मोमिन के तजर्बे में है कि मैयत होती है तो मैयत में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मग़फिर लिहय्यना व मैयतना व शाहिदना व गाइबना। सुनन इब्न माजा बाबो माजा फि दुआ फि सलाति अला जनाजा। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, और हमारे हाजिरों को भी बख्श दे, और हमारे गायबों को भी। यहाँ भी शाहिद बमाना हाजिर के है, और वो मकामात जहाँ हुज्जाज कराम मनासिक हज की अदायगी के लिए जमा होते हैं उन्हें मशाहिदुल हज कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि शहीद कहाँ हाजिर होता है जिसकी मुनासिबत से

उसकी मौत शहादत कहलाती है। अहादीसे मुबारका में शहीद की मौत में हाज़री की दो जहतें बयान की गईं। हाज़री की एक जहत ये बयान हुई कि जब इंसान शहीद होता है और उसकी रूह कब्ज़े अंसुरी से परवाज करती है तो उस वक्त उसको अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया जाता है। चुनांचे सुनने इब्न माजा अबवाबुल जिहाद में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम्हारे बाप से अल्लाह ने क्या फरमाया? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने बग़ैर हिजाब के किसी से कलाम नहीं फरमाया, लेकिन तुम्हारे बाप से बग़ैर हिजाब के कलाम फरमाया और फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मुझसे कुछ मांग कि मैं तुझको अता करूँ। तेरे बाप ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे दोबारा ज़िंदा फरमा ताकि मैं तेरे रास्ते में दोबारा कत्ल किया जाऊँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तो हम पहले ही से तय कर चुके हैं कि यहाँ आने के बाद दुनिया में वापसी ना होगी। उसने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जानिब से लोगों को मेरा पैगाम पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई, वला तहसबन्ना अल्लज़ीन क़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता इला आखिरी। इस हदीस मुबारका से पता चलता है जंगे वहद में हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत पाते ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया गया था और उन्होंने बिला हिजाब अल्लाह का दीदार किया और अल्लाह की बारगाह में वक्त मौत रूह का बराह रास्त हाजिर होना, ये सआदत फ़कत शहीद को नसीब होती है। वरना रूह के हज़ारों पर्दे होते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में तो दरकिनार अर्श मुअल्ला तक पहुँचने में भी हायल होते हैं। हाज़री की दूसरी जहत, शहीद के माने हाजिर होना। हदीस पाक में ये बयान हुआ कि जब शहीद की रूह निकलती है तो हज़ारहा मलाइका उसके पास हाजिर कर दिए जाते हैं, जिनके सामने बड़ी शान के साथ शहीद की रूह कब्ज़ करके बारगह खुदावंदी में पेश कर दी जाती है। चुनांचे हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है कि जंगे वहद के दिन मेरे वालिद की लाश हुजूर नबी अकरम सल्लम के सामने इस हाल में लाई गई कि काफिरों ने उनका मसला कर डाला था। जब जनाजा आपके सामने था तो मैं खड़ा खड़ा कफन खोल कर उनका दीदार कर रहा था, जिस पर लोगों ने मुझे मना किया। इतने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की चीख पुकार सुनी। तफ्तीश हाल पे पता चला अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन या फूफी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लम ने उन्हें यूं मना फरमाया, तुम मत रो, इस अब्दुल्ला पर तो फरिश्ते परों के साए किए हुए हैं। सही बुखारी किताबुल जिहाद, गोया शहीद की मौत मशहूद बिल मलाइका होती है, लिहाजा उसे शहीद इसीलिए कहते हैं, उसकी मौत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शहीद मरकर भी जिंदा कैसे होता है? शहीद पर जब जलवे हक आशिकार होते हैं तो अल्लाह के हुजूर उसकी रूह को पेश किया जाता है तो अल्लाह ताला उस पर ऐसी तजल्ली नूर करता है जो उसकी रूह तक चमक तासीर और कुव्वत अता कर देती है, और ये रूह बावजूदे कि बदन से बहुत दूर मकाम इल्लीन में होती है मगर जिस्म को कब्र में सही सलामत तरोताज़ा रखती है। मिसाल के तौर पर जैसे सूरज के पौधे से करोड़ों मील फासले पर सूरज होता है, उसके बावजूद सूरज अपनी तपिश यानी गर्मी और असर से ज़मीन में पौधे को ज़िंदा सलामत रखता है। जब बंदा अल्लाह के लिए मर जाता है तो अल्लाह

ताला अपने दीदार और विसाल और ख़ुशी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले इस बंदे की रूह को वो नूर, चमक और तासीर और कुव्वत अता फरमाता है कि करोड़ों सूरज भी उसके सामने हेच हो जाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला के बंदों का जिस्म ज़मीन पर रहकर भी रूह के फैज़ान से तरोताज़ा और अबदुल आबाद तक ज़िंदा और सलामत रहता है। यहाँ ये बात याद रखने की बड़ी सख्त ज़रूरत, जिस तरह सूरज का पौधे को रोशनी पहुँचाने के लिए पौधे के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पौधे को सिर्फ तपिश और रोशनी की ज़रूरत होती है, सूरज की नहीं। क्योंकि अगर मसनवी तरीक़े से पौधे की ज़रूरियात बाला पूरी कर देती है तो पौधा नशोनुमा और इर्तिका में सूरज का मोहताज नहीं रहता। इसी तरह रूह जिस्म के अंदर रहे या बाहर बराबर है, क्योंकि जिस्म को भी रूह की ज़रूरत नहीं बल्कि उस असर की ज़रूरत है जिससे जिस्म सलामत और तरोताज़ा रहे। चुनांचे अगर रूह बाहर रहकर भी इतनी ताकतवर है कि अपने फैज़ का असर जिस्म को पहुंचा सकती है, तो वो जिस्म जिस तरह ज़िंदगी में सही सलामत था, इसी तरह मरने के बाद भी सही और सलामत रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप ये सवाल कर सकते हो इसका कोई लॉजिक आप कुरान की दलील से दें। तो मुख्तसर में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में बयान हुआ कि एक हज़ारों बरस पुरानी बस्ती के करीब से गुज़रे, जहाँ हज़ारों साल पुरानी कब्रें थीं, मुर्दों के जिस्मों का निशान तक न था, हर तरफ खाक यानी मिट्टी उड़ रही थी। ये देखकर उन्हें ख़्याल हुआ कि अल्लाह ऐसी बेनिशान हस्ती और बस्तियों को क़यामत के दिन किस तरह ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने उन पर 100 साल की मौत तारी कर दी। अल्लाह ने उनको 100 साल के लिए मुर्दा रखा, जिसमें इंसानी जो 6 महीने साल भर में सड़ गल कर ख़त्म हो जाती है। कुरान शाहिद है कि वही जिस्म बग़ैर रूह के 100 साल तक लको दक सहरा में पड़ा रहा, मगर जिस्म न सड़ा था न गलने पाया था, जिससे मालूम हुआ अगर रूह की ताकत तासीर कायम रहे तो जिस्म में मौजूद ना भी हो तो जिस्म की दुनियावी कैफियत तब्दील नहीं होती। इसी तरह कुरान हकीम की दूसरी आप दलील सुन लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान का बयान है कि जिन्नात को आपने हुक्म दिया वो बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद की तामीर करें। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के जिन्नात ताबे थे। हुक्म पर पत्थर, गारे और ईंटों से मस्जिद की तामीर में लग गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े होकर उनकी निगरानी फरमा रहे थे। आपकी हैबत और रोब व जलाल का यह आलम था कि जब इसी हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और बकौल मुफस्सरीन आप 1 साल तक विसाल के बाद असा के सहारे खड़े रहे और जिन्नात बराबर काम में लगे रहे, हज़रत निगरानी फरमा रहे हैं। जब असा घुन लग जाने की वजह से टूट गया तो वो गिर पड़े, तो जिन्नात पर हकीकत का इंकशाफ हुआ और अपने साल भर की ज़िल्लत पर कफ़े अफसोस मनने लगे, जैसा कि कुरान हकीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह सबा में। फिर हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर फरमाया तो किसी चीज़ ने उन जिन्नात को उनकी मौत से आगाह न किया बजुस एक घुन के कीड़े के, जो उनके यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खाता रहा। फिर जब मस्जिद तामीर हो गई और जब वो गिर पड़े, तब जिनों को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका। मरने के बाद जिस्म का सलामत रहना सिर्फ अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के लिए ही नहीं बल्कि गैर अम्बिया के लिए भी साबित है। चुनांचे सूरह कहफ में आप देखें कि दीन ईसवी के 7 पैरोकार दकियानीसियों के जुल्म जबर से तंग आकर पनाह लेने के लिए एक गार में छुपे, तो वो 309 साल तक गार में रहे, जैसा कि कुरान ने

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। क्यूपिप से नाजिमा मुतुला अपने शोहर रिशाद मुतुला के लिए एक मनकबत की फरमाइश कर रही हैं और उनके बेटे बहू कुलसूम, पोती बरीरा, मलाइका, मनहा भी दुआएं भेज रही हैं। इसके अलावा किसी ने हमसे एक मनकबत की फरमाइश की है, मेरा बादशाह हुसैन है, उन्होंने अभी अपना नाम नहीं बताया। इसके अलावा एक और कलाम की फरमाइश की है, मैं बंदा यासी हूँ जिसे हम कल चलाने की कोशिश करेंगे। पूरी एमबीसी टीम के लिए मोहसिन ने इस कलाम की फरमाइश की है। इसके अलावा इस्लामी नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं तमाम बहन भाइयों को, बंधु और कुर्मली फैमिलीज़ जो कि त्रियोले की रहने वाली हैं, और सलीम, रकीबा, रेहान, इस्माइल जीवन और नसीर, नाजमा महबूब नुतखदाम से एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा ईसाले सवाब की गुजारिश की है, जी हाँ, समीर ने ईसाले सवाब की गुजारिश की है। वालदा

नाजिला, दादा याकूब, दादी मरियम, नाना यूसुफ, समीर, इस्लामी नए साल की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं तमाम मुसलमानों को, और ख़ास तौर पर अपनी बेगम नाजिया और अपने बच्चे अली, फरहान और हैदर अली को। इसके अलावा हमें एक और पैगाम भी मौसूल हुआ है। जी हाँ, वाकवा से नसरीन भी मुहर्रम के महीने की इस सबको मुबारकबाद पेश कर रही हैं, और वो हमारे प्रोग्राम को सुनना हमेशा बहुत पसंद करती हैं और इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं भाई हमीद इमाम बकर, जिनकी आज 5वीं बरसी है। वो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उन्होंने हमसे एक कलाम की फरमाइश की है जिसे इंशाल्लाह ताला हम कल चलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 18 जून, घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:45 बज चुके हैं और यहाँ से शुरुआत होती है आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद की। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। तो चलिए, यहाँ पर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर 4 बजे तक चलेगा आपकी पसंद ये प्रोग्राम। सो कैसे हैं आप, ठीक है ना? और चलिए, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। और अभी से लेकर 4 बजे तक आपके पसंदीदा गाने आप ही के फरमाइश पर, आप ही के रिक्वेस्ट पर, आपके अपनों के लिए हम चलाएंगे। और जुड़ जाइए हमारे साथ 4028085, या तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 5251700005 पर। तो चलिए, फरमाइशी गीतों का ये प्रोग्राम है और शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सफ़र की। अनवर सुलक्षणा पंडित और साथियों की आवाज़ों में इस खूबसूरत गाने के साथ, मौसम मौसम लवली मौसम। वाकई में आज मौसम यहाँ पर इतना सुहाना है, ठंड का तो नामो निशान नहीं है, एक अच्छी सुनहरी धूप खिली हुई है। और ऐसे में खूबसूरत गाने और आपका साथ, इससे बेहतर क्या हो सकता है भला।

0: चलिए, जो खूबसूरत मौसम बाहर छाया हुआ है, उम्मीद करते हैं इसका असर आप पर भी हो रहा होगा।
1: आपकी पसंद,
0: चलिए आपकी पसंद यह प्रोग्राम है। बहुत सारे सुनने वाले ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम लोग आपकी आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन आप लोगों को अभी तक हमने देखा नहीं है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जब हम आउटडोर प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे सुनने वाले हमसे मिलने आ जाते हैं, हमसे जुड़ते हैं। और आजकल तो हमारा रेडियो मॉरिशस का टिकटॉक पेज है, रेडियो मनोरंजन का टिकटॉक पेज है। अगर आप उन टिकटॉक पेज को फॉलो करते हैं, रेडियो मॉरिशस का या रेडियो मनोरंजन दोनों ही, तो वहाँ पर हम अपने वीडियोज़ जो है प्रोग्राम के लिए डालते ही रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी के लिए आप रेडियो के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला खूबसूरत सा जो तराना है, सरस्वती चंद्र इस फिल्म से लिया गया है, लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में। और फूल तुम्हें भेजा है खत में, गाना जाता है कतकोको की संगीता जी। आपके नाम बड़े ही प्यार से ये गाना वो डेडिकेट कर रही है अपने पति विजय के लिए। साथ में यशवीर है, इश्नेशा है, काजल है, दामाद है मिथुन, आरोही आरुष और आरोही है, सभी पाताव परिवार, सभी रिगा परिवारों के नाम ये जो अगला तराना है चल पड़ा, और उन सभी के नाम जो मुकेश साहब और लता जी के फैंस हैं।

0: की पसंद।
1: चलिए यहाँ पर फूल तो नहीं लेकिन आपकी फरमाइशें ज़रूर आ रही है। अगला तराना यहाँ पर दिल एक मंदिर फिल्म का, माला सुमारू जी आपके नाम हम करते हैं, सभी सुमारू परिवार के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। यही गाना यूनियन पार्क की प्रीति जी आपके लिए, मयूर, आदर्श, वेदना, विवेक और अविष्टा जी आप सभी के लिए।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश के उत्तर में कटनी की अवधि शुरू होने वाली है। अगहितेहा में 26 जून को गन्ने की कटनी शुरू हो रही है। इससे कुछ दिन पहले बेलवी कारखाने में आज इस विशेष अवसर पर वहां के सभी कर्मचारियों को जुटाया गया। कई अलग अलग विभाग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, जिस दौरान वहां पर विशेष प्रार्थनाएं की गईं। मध्य पूर्व संकट के चलते संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1000 मांगें की जा चुकी हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इन इंडस्ट्री अथॉरिटी नियमों के ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन और बदलावों का इंतजार कर रही हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारियों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन किया जाए। पहले चरण में भारत से 300 श्रमिकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेश की खबरों में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। उन्होंने तेल रिफाइनरी के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर हमलों की पुष्टि भी की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: आपकी पसंद।
5: चले 3:03, गुरुवार 18 जून। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में 4 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। और चलिए यहाँ पर गीतों के इस फरमाइश को आगे ले जाते हैं। 4028085 पर आपके कॉल्स यूं ही हमें मिलते रहे, और साथ ही आपके ढेर सारे मैसेजेस जो हमें मिल रहे हैं 5251700005 पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव इन टोक्यो का ये जो अगला तराना है, मुझे तुम मिल गए हमदम, गाना जाता है लिस्कालिए के इंद्रानी जी की ओर से उनके पति मनोहर के नाम। साथ में येशना है, संजना है, अक्षय है, उनकी ननद है उषा, और लिस्कालिए के इनके सभी परिवारों के नाम जो इस समय बड़े ही प्यार से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए यहाँ पर ये गाना चल पड़ा आपके लिए।

0: आपकी पसंद।
1: मुझे तुम मिल गए हम तमचा। चलिए यहाँ पर अभी के लिए आपके डेडिकेशन हमें मिल रहे हैं, आपकी फरमाइश हमें मिल रही है। और अगला जो तराना है मिस्टर नटवरलाल, फिल्म का ये गाना है माला जी आपके नाम जाता है, माला जरी जी, और ये गाना आपकी ओर से आपके पति के नाम जिनको ये गाना बहुत पसंद है। ऑलराइट ईश्वर, आपकी बेटी है रीमा, बेटा है दीपक, माला जरी, सभी जरी परिवार के नाम, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो सो मच माला जी। और यही गाना उन सभी के नाम जो इस गाने को पसंद करते हैं। ऐसे ये गाना मेरा भी फेवरेट है।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए।

ये गाने शायद आपका भी दिल चुरा रहे होंगे। इसे परदेसिया, ये जो गाना है मिस्टर नटवरलाल का, एक आइकॉनिक गाना है। आई मीन सुनते ही जैसे माहौल बदल जाता है ना, और एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। खुशी मानो चारों ओर से झलकने लगती है। अमित जी और रेखा जी पर पिक्चराइज्ड हुआ था आज से न जाने कितने दशक पहले, और आज भी जब इस गाने को हम सुनते हैं मानो वही उसी खुशी को महसूस कर पाते हैं, उसी खूबसूरती को महसूस कर पाते हैं, उसी प्यार को महसूस कर पाते हैं। चलिए 3:15 बज चुके हैं, अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। वो दिन याद करो फिल्म का ये जो अगला गाना है, तलत महमूद साहब और लता जी की आवाज़ों में है, मोहब्बत की कहानियाँ। ये गाना भी अपने आप में एक यूनिक सा तराना है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी बात ही कुछ और होती है, ये गाना भी ऐसे ही कुछ है। पोर्ट लुइस से इब्राहिम जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है उनके लिए और हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम जी। गाना चल पड़ा, और यही गाना तलत महमूद साहब के सभी फैंस के नाम। ऐसे यहाँ पर यही गाना तलत महमूद जी और लता जी के सभी चाहने वालों के लिए भी।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए आप कुछ जन्मदिन की शुभकामनाएं जोड़ते हैं। ऐसे आज अगर आप आपके परिवार के सदस्य कोई जन्मदिन मना रहा है, आने वाले दिनों में मनाने वाले हैं, या किसी का जन्मदिन था, आप उनकी फरमाइश, आप उनके जो बर्थडे विशेस हैं हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उन सभी को हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाई। यकीनन हम हमेशा कहते हैं बर्थडे बहुत ही स्पेशल होता है, और ये जो जन्मदिन की खुशी है ये सिर्फ जन्मदिन के दिन तक सीमित ना रहे, हमेशा जो है ये खुशियाँ आपके दामन में रहे और कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी आपको कभी छू ना पाए, ऐसी कामना हम करते हैं। यहाँ पर पोता शुभम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुभम, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आपकी नानी शोभा बंधु की ओर से, मम्मा करुणा की ओर से, पापा शरद की ओर से, केशव, श्रवण, आशना, सभी ताराचंद परिवार और सभी बंधु परिवारों की ओर से शुभम आपको हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर जो है मौसी इंदिरा चिकुरी जी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रही है। इंदिरा जी, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आई है। आशा जानू जी की ओर से, कुतेज से, साथ में जन्मदिन की शुभकामनाएं कुमारी जी की ओर से, शुभम है, ऋषभ है, आरती है, राज है, सभी जानू परिवार की ओर से, सभी चिकुरी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। मामी कमला, संगीता और अमृता की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएँ। और जितने भी सुनने वाले आज जन्मदिन मना रहे हैं, ये जो खूबसूरत सुरत सा तराना है आप सभी के लिए चल पड़ा, और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे।

को एक अलग ही दिशा देते हैं। जीवन में कभी कभार बड़ों का आशीर्वाद होने से ही ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल जाता है, इसलिए बड़ों का होना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। अपनों के प्यार से, अपनों के साथी से तो ज़िंदगी का सफ़र काटा जाता है, वरना अकेले ज़िंदगी के सफ़र को काटना थोड़ी ना उतना आसान होता है। चलिए, थोड़ी देर पहले तलत महमूद साहब की आवाज़ में गाना यहाँ पर हमने चलाया था, मोहब्बत की कहानियाँ। तो किसी ने कहा कि जब तलत महमूद साहब की आवाज़ में एक गाना चलाए तो क्यों ना एक गाना तलत अजीज़ जीज के आवाज़ में हो जाए। चलिए क्यों नहीं भाई, आप फरमाइश करें और हम ना चलाएं, ऐसा हो सकता है भला? तो चलिए, यहाँ पर रिजवान जी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, गाना जाता है आपके नाम। विश्वानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये गाना जो है, विश्वानी जी आपके नाम हम करते हैं बड़े ही प्यार से, आप हमेशा हमारा साथ देती हैं अपने पूरे परिवार के साथ, सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए। सभी डुमन परिवारों के नाम, इंदिरा है, शारदा है, नीला है, प्रतिभा है, सभी बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं। और यही गाना बंधु परिवार के नाम जो ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय जो है हमारा साथ दे रहे हैं, सुदेवी जी वाकवा से शुक्रिया, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। अगला गीत ट्रियोले की आपकी दीदी लालिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज के लिए। जी हाँ, दीदी सुनीता है, देवीना है, चंदा है, वंश, वैभव, वीर, निया, मालिंगा के सभी रामरतन परिवार, सभी रामगुराम परिवार, सभी कुवारू परिवारों के नाम। ये तराना चल पड़ा फिर छिड़ी रात बात फूलों की, तलत अजीज साहब और लता जी की आवाज़ों में।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए कुछ गाने, जैसे हमने तभी भी कहा था अभी भी, कुछ गाने जो है ना मानो के माहौल बदल देते हैं, है ना। कुछ गाने होते ही ऐसे हैं। चलिए यहाँ पर खूबसूरत गाने का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं। आप सोचते होंगे बातें करते करते हम इतना हंसते क्यों हैं। हंसते इसलिए है क्योंकि काम करते करते काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आते हैं आपसे मिलने, और कहते हैं ना कि मुस्कुरा कर मिलने से ना तो सबका दिन अच्छा जाता है। एक दूसरे के साथ मिलते हैं, प्यार से हम जो है बातें करते हैं, और यही सब तो चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, है ना। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर सब कुछ होता है। और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर डेजीना का जन्मदिन है, डेजीना पोफिया से है, और सभी सिसंको परिवार, सभी जोलिम परिवार और सभी राम परिवार की ओर से डेजीना आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर शुभकामनाएं खासकर आई है मीला जी की ओर से, निवग्रोव से, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। और चलें यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है यहाँ पर अक्षय के नाम, लक्ष्मी जी आपके नाम, जो बॉम्बू से हमारा साथ दे रही है। और यही तराना जो है जाता है खास कर आशनी के लिए, अक्षय आशनी के नाम, भाई है सुरेश, अनिल सुनील, बहने हैं कुमारी सीला, बॉम्बू से पूरा परिवार इस समय हमें सुन रहा है। और बिल्कुल हम आपका नाम नहीं भूले हैं। ये वादा रहा फिल्म का, ये जो तराना है बस आपके लिए हम चलाने ही वाले हैं यहाँ पर। और यही गाना खासकर उन सभी के नाम जो इस गाने को पसंद करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 3:45 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। विलाज दे मौसलमा लेडी बॉकले मौसलमा तेरासिन सुयाक, विलाज दे मौसलमा लेडी बॉकले मौसलमा तेरासिन सुयाक। यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज गुरुवार 18

जून को, यहाँ पर आज गुरुवार 18 जून को 3 बजे से ही यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है, यानी कि इस समय यहाँ पर 3 बजे से ही बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है जो चलेगी शाम के 6 बजे तक। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से यहाँ पर दोपहर के 3 बजे से ही आज बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है जो चलेगी शाम के 6 बजे तक, और ज़रूरी मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।

और चलिए यहाँ पर इसी के साथ आपकी पसंद इस प्रोग्राम के आखिरी गाने की ओर बढ़ते हैं। गाना जाता है बेलरोज की शिमला जी, आपके नाम बहुत बहुत शुक्रिया गानों को पसंद करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं, आप साथ दे रही हैं। कल्याणी जी, आप भी जुड़ी हुई है। ग्रामबुआ की शिवरानी जी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस, तो इतने प्यार के लिए धन्यवाद। जाते जाते

0: गाना तमाम सुनने वालों के नाम जो हर रोज़ आपके पसंद इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। 4 बजे भक्ति सागर इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हमारे साथ, तो जुड़े रहिए, बने रहिए रेडियो मॉरिशस पर। धन्यवाद।
1: तुमको भी है खबर

गुरुवार 18 जून, घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं और यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति सागर की। सुमिता की ओर से एक बार फिर से नमस्कार स्वीकार करें, आप सभी का हृदय से स्वागत हम करते हैं। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम और आपको बता दें इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। अभी के लिए हमेशा की तरह आइए भगवान गणेश का स्मरण करते हैं।

0: तो चलिए, गजानन के नाम से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ पर भगवान गणेश जो है सभी विघ्नों को तो दूर करते ही है और सबका कल्याण करते हैं। यहाँ पर अभी के लिए आइए अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। धारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
1: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में

मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मारीच और सुबाहु का वध करने के लिए श्रीराम को मांगते हैं, तब महाराज दशरथ एक विवश पिता की भांति ब्रह्मर्षि से याचना करने लगते हैं। मारीच और सुबाहु जैसे निशाचरों से भिड़ने के लिए वे अपने प्यारे पुत्र श्री राम को नहीं भेजना चाहते हैं। अपनी विवशता ब्रह्मर्षि के सामने रखते हुए वे कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, मैंने बहुत कष्ट सहकर 60 वर्ष की आयु में पुत्र रूप में श्री राम को पाया है। मेरे सभी पुत्रों में श्री राम मुझे सबसे प्रिय हैं, और फिर श्री राम किशोर हैं, बालक हैं, युद्ध विद्या में उसका अनुभव शून्य है। श्रोताओं, जब महाराज दशरथ को पता चलता है कि मारीच और सुबाहु के सहायक रावण हैं, तब वे और भी अधिक चिंतित होते हैं। रावण के विषय में जानकारी देते हुए विश्वामित्र कहते हैं कि पौलस्त्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः, कि हे महाराज दशरथ, यह वही रावण है जो महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न हुए हैं। उसी रावण का समर्थन पाकर मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। श्रोताओं, लंका का राजा रावण राक्षसों का मुखिया था। रावण का शाब्दिक अर्थ है चीखने वाला, दहाड़ने वाला, चिल्लाने वाला, और राक्षस का

अर्थ होता है पिशाच प्रवृत्ति वाला, जिसे अंधकार प्रिय हो, जो दुष्ट स्वभाव वाला हो, जो दूसरों को दुख देता हो। अत्याचारी रावण मारीच और सुबाहु का सहायक था, परंतु वह था बड़ा ही शक्तिशाली। चिंतित दशरथ जी कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, उस दुरात्मा रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए श्री राम को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रोताओं, वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ब्रह्म को पहचानने वाले ऋषि थे, वे दूरदर्शी थे, वे श्री राम का कल्याण करना चाहते थे, उनकी ख्याति विश्व भर में फैलाना चाहते थे। पिता के पुण्य और यश को पुत्र फैलाता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री राम से कुछ ऐसे अनोखे कार्य करवाना चाहते थे जिनसे कि राजा दशरथ की कीर्ति लोक लोकांतर में फैल जाए। उन्होंने तो महाराज दशरथ से स्पष्ट कह भी दिया था कि श्री राम मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और श्री राम की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और श्रोताओं, जिसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र करते, उसे भला कौन मार सकता था। दशरथ जी को पुत्र मोह में विचलित होता देख विश्वामित्र जी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और महाराज दशरथ को फटकार सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्वम प्रतिज्ञाम हातुमिच्छयसि राघवाणाम युक्तो अयम कुलस्यास्य विपर्ययः। रामायण के बाल कांड के 12वें सर्ग का यह श्लोक अत्यंत ही भावपूर्ण एवं मार्मिक है। श्रोताओ, महामुनि विश्वामित्र क्रुद्ध होकर कहते हैं कि हे महाराज, क्या आप भूल गए हैं कि आप रघुवंशी हैं? रघुवंशी वचन देकर निभाने वाले होते हैं, रघुवंशी वचन भंग करने वाले नहीं होते हैं। आप तो पुत्र मोह में पड़कर रघुवंशियों के विपरीत कार्य करने को तत्पर हो गए हैं। क्या यही आपके कुल की महान परंपरा रही है? अगर आप अपने वचन से मुकर रहे हैं तो ठीक है, मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। श्रोताओं, क्रोधित विश्वामित्र की वाणी सुनकर ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाते हुए कहते हैं कि इक्ष्वाकूणाम कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान सुव्रतः श्रीमान्न धर्मम हातो मरहसि। कि हे महाराज दशरथ, आप श्रेष्ठ रघुवंशियों के विपरीत कैसे जा सकते हैं? क्या आपको स्मरण नहीं है कि आप इक्ष्वाकु कुल में जन्मे हैं? आप तो धर्म की मूर्ति हैं, श्रीमान हैं, धैर्यवान हैं, श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले हैं, तपस्वी हैं। आप तीनों लोकों में धर्मात्मा नाम से विख्यात हैं, इसीलिए आप धर्म को मत त्यागिए। धर्म की रक्षा करते हुए अपनी कीर्ति को अक्षुण बनाए रखिए। अधर्म का आचरण आप मत कीजिए। हे राजन, जो व्यक्ति वचन देकर उसे पूर्ण नहीं करता है, उसका यज्ञ सफल नहीं होता है, उसके समस्त धर्म कार्य खंडित हो जाते हैं, उसके किए हुए सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं। हे महाराज, आप अपने यश को अपयश में परिवर्तित मत कीजिए। आप श्री राम को ब्रह्मर्षि के साथ भेज दीजिए। श्रोताओं, वशिष्ठ जी व्रत पारायण ऋषि थे, सूर्यवंशी राजाओं के कुल

पुरोहित थे, वैदिक सूक्तों के ऋषि थे। वे ब्राह्मणोचित प्रतिष्ठा और शक्ति के आदर्श प्रतिनिधि थे। वे महामुनि विश्वामित्र की मंशा समझते थे और महाराज दशरथ के संशय को भी पहचानते थे। इसलिए दशरथ जी को आश्वासन देते हुए वे कहते हैं कि हे राजन, विश्वामित्र जी के रहते श्रीराम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। और तब श्रोताओं, वशिष्ठ जी महातेजस्वी विश्वामित्र के दिव्य गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि महावीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशः न रामगमने राजन संशयम् गन्तुमर्हसि। कि हे महाराज दशरथ, विश्वामित्र जी स्वयं महापराक्रमी महातेजस्वी और महायशस्वी हैं। इन्हें राक्षसों को समाप्त करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, परंतु वे आपके पुत्र और आप पर कृपा करने आए हैं। आपके हित के लिए वे श्री राम को मांग रहे हैं। श्री राम अगर युद्ध विद्या में अनुभवी नहीं हैं तो क्या हुआ? वे पूर्ण रूप से विश्वामित्र जी द्वारा सुरक्षित रहेंगे। महाबलशाली ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के रहते राक्षस श्री राम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए आप तनिक भी संकोच मत कीजिए। श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए और अपने दिए हुए वचन का पालन कीजिए। श्रोता भाई बहनों, जिस प्रकार शिष्य एक योग्य गुरु को ढूंढता है, उसी प्रकार एक योग्य गुरु भी उपयुक्त शिष्य की खोज में रहता है। विश्वामित्र जी ब्रह्मज्ञानी थे, ज्ञान विज्ञान के स्वामी थे। अपने ज्ञान के प्रकाश से वे श्री राम के भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते थे। इसलिए वे दशरथ जी से श्री राम को मांगने आए थे। सक्षम गुरु और योग्य शिष्य बड़े भाग से मिलते हैं। अपने वचन का पालन करते हुए राजा दशरथ आगे क्या करेंगे, यह हम अगले सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

0: बजरंग बली की
1: जय।
0: जय बजरंग बली की
2: जय। डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा।

डॉक्टर शांति महावीर जी को हम धन्यवाद देते हैं पीयूष थारा इस कार्यक्रम के लिए। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं। गुरुवार का दिन है, भगवान साई की आराधना होती है, तो आइए इस अगले भक्ति गीत द्वारा साई जी का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और इस भक्ति गीत में भगवान साई के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी नाम है। और कहते हैं ना कि देवी देवता जो होते हैं सदैव मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, देवी देवता जो होते हैं सदैव हमारा अच्छा चाहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जीवन में कुछ चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है, तो हम अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं कि हमें वो नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन कभी कभार होता ऐसा है कि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसके हम मिलने से हमारा कहीं ना कहीं भला हो।

श्रोताओ, हमारे सोच का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाता है। और अभी नए युग में, नए ज़माने में बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ नहीं, अपने आप में ध्यान है। एक ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, यानी कि आगे पर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उस पर ध्यान करना। उस चीज़ को आप कैसे चाहते हैं, कब चाहते हैं, या जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो खुशी वाले बातें करें, अपने बारे में सदैव अच्छा बोले, अपने बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि अच्छा सोचने से ही तो अच्छे परिणाम मिलते हैं जीवन में। तो अगर कहते हैं ना कि सवेरे सवेरे उठते ही एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार हमारे पूरे दिन के दिशा को बदल सकती है, तो इसलिए बस एक अच्छे सोच से जब अच्छे दिन का आरंभ हो सकता है, तो एक अच्छी सोच से हम अपने पूरे जीवन को क्यों नहीं अच्छा कर सकते। और अच्छाई का एक कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो बदले में जीवन में कई ऐसे अच्छे अवसर हमें मिलने लगते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हम सफलता की ओर जा सकते हैं। और मन अच्छा होता है तो आसपास का वातावरण भी अपने आप में अच्छा होने लगता है। मन शांत होता है तो मन में विचार जो है वो भी अच्छे आने लगते हैं। और जब मन स्थिर होता है तो कभी भी जीवन में हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, क्योंकि स्थिर मन से लिया गया हर एक निर्णय कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम ही देता है।

श्रोताओ, कहते हैं जीवन में छोटी छोटी बातों का ही बहुत बड़ा बड़ा महत्व होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और बड़े बड़े चीज़ों के पीछे भागते हैं। कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम ही से हम बड़े बड़े जो है सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। एक छोटा सा कदम, एक छोटे से उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं तब जाकर हम बड़ी बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। कभी भी हम बड़ी छलांग नहीं लगा सकते हैं जीवन में, कभी भी हम इतनी लंबी दौड़ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जहाँ पर जाते जाते ही हम थक जाएंगे। तो फिर जब तक हम अपने जो है लक्ष्य तक पहुँचेंगे तब तक तो हम उस जो भी हमने प्राप्त किया है उसका आनंद ही नहीं उठा पाएंगे। तो छोटे छोटे कदमों से जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी ऊंचाइयों को, छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते करते आगे बढ़ते हैं, ये जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां हमें देती हैं, ये जीवन में बड़े बड़े सुख हमें देते हैं। और जीवन में जब सुख होता है, जीवन में जब आनंद के क्षण होते हैं, ऐसे में तो हम ईश्वर का सदैव ध्यान करते ही है, धन्यवाद करते ही हैं, ईश्वर का स्मरण करते ही हैं। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर को सिर्फ तभी नहीं याद करना चाहिए जब हम दुख में हों, हमेशा ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, फिर चाहे दुख हो या

श्रोताओं, ईश्वर का नाम लेते लेते, ईश्वर का स्मरण करते करते कब हम कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति की ओर आ पहुँचे हैं पता ही नहीं चला। देखा ना, ईश्वर का नाम ही अपने आप में ऐसा स्थान रखता है हमारे जीवन में जो हमें सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति की अनुभूति कराता है। तो चलिए, इसी के साथ समय हुआ है कि हम आपसे विदा लें। आपने साथ दिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बजे पूनम की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। हमारी आपकी भेंट जल्द होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार आप सभी को।

0: टाइम चेक, शाम के 5 बज रहे हैं।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:05 हो चुके हैं शाम के, और ये शाम का समय अपने आप में बहुत ही खास होता है। दिन की भाग दौड़ के बाद धीरे धीरे पीछे समय छूटता जाता है और मन चाहता है कुछ अच्छे से प्यारे से गाने सुने जाएं। तो अगले एक घंटे हम चलाएंगे आपके पसंद के गाने। यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आप इंजॉय कर रहे हैं आपका, कहते हैं ना रेडियो मॉरिशस पे हम गाने तो बहुत सारे चलाते हैं, पर देखिए जैसे कि एक एक करके कॉल्स आने शुरू भी हो चुके हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5251705 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 4028085 पर, और चलाएंगे हम आपकी पसंद के वो गाने जो बहुत समय से आपने नहीं सुने थे, या ऐसे गाने जो कई बार आप सुनते हैं आपके दिल में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि बार बार आपको लगता है कि बस ये गाने चलते रहें और आप सुनते रहें। तो तब चलिए इंजॉय करते हैं आपके ही इन गानों को।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: कहते हैं बहुत ही खूबसूरत बात होती है जब लता मंगेशकर जी और आशा भोसले एक साथ गाएं, और उस समय ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी थोड़ी सी खुशनुमा सी हो जाती है और शाम तो बहुत ही सुहानी। जिसने भी ये पसंद का गाना गाया या किसी ने भी ये बनाया, उसने बहुत ही खूबसूरती से बनाया होगा, क्योंकि कहते हैं कि लता जी की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़ दोनों को ही सरस्वती का नाम दिया गया है। और उसी तरीके से हमारे साथ जब आप सब जुड़ जाते हैं, आपकी पसंद भी जुड़ जाती है, तो और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि आप कहते हैं कि शाम हो चाहे रात हो चाहे सुबह हो, हमारे हमेशा आपके साथ रेडियो मॉरिशस साथ जुड़ा रहता है। और जब ये साथ जुड़ा रहता है तो आपको किस चीज़ की तकलीफ हो, और हमें तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि चाहे एक एक करके आपके मैसेजेस या गाने या आपके टेलीफोन उठाने पड़ते हैं, पर हमें लगता है कि आपकी पसंद सबसे इंपॉर्टेंट होती है और हमारे सर आँखों पर होती है। तो अगर मैं आपका नंबर या उठा नहीं पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सबके एक एक करके गाने ज़रूर चलेंगे, जिनके भी हम चला पाएंगे एक घंटे के अंदर। तो इस समय हमारे साथ इब्राहिम जी जुड़े हुए हैं, जो एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं बेटा और बेटी मूवी से, तो हम उनके एक फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। साथ में गीता जी, रोहित अपने हस्बैंड के लिए, बेटों के लिए और अपनी दो बहुएं और तीन बेटे और तीन नातियों के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। अफेज जी हैं जो कि निकाह मूवी से एक गाना सुनना चाहते हैं और बहुत ही खुश हो रही हैं कि उन्होंने अभी बात किया। तो थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस और कॉल के लिए। और संगीता जी जुड़ी हुई हैं साथ में, और जो एक प्यारा गाना मुकेश की आवाज़ में सुनना चाहती हैं। माला जी, सुमारो जी साथ जुड़ी हुई हैं और वो भी एक बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो हम एक एक करके आपके गाने सुनने चलाएंगे।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: आप सभी का स्वागत है सदाबहार गीतों में, और ये प्रोग्राम आपकी पसंद के ही गाने चलते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस जुड़े हुए हैं साथ साथ, पर हम आपको यही कहेंगे कि आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एक एक करके हम सभी के गाने चलाएंगे। इसके बाद अभी चलने वाला है निकाह मूवी का गाना, और इसके साथ पहले साथ में दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मोन जी, जो कि एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। आशा, सूरज शर्मा, साजदा जी, लैला जी जुड़ी हुई हैं बहुत शेरी से, शोभा जी जुड़ी हुई हैं वाकवा से, और एक वो प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, पर हम आपको कहेंगे आपका गाना बहुत ही पसंद है। और सभी को जिनको भी अपनी पसंद के गाने पसंद होते हैं, ज़रूरी नहीं एक दूसरे को पसंद आए, बट हमें लगता है कि अगर सब एक दूसरे के गानों को पसंद करें तो क्या बात हो जाएगी, शाम तो सुहानी होगी। साथ में कहते हैं कि रिलैक्स मोड पर आप सोएंगे, और इंतज़ार जब होगा सुबह का तो आप देखिए बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। साथ में अगर आप शाम का इस टाइम कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ पीने की तैयारी कर रहे हैं, चाय या कुछ, तो पीजिए, आराम से इंजॉय कीजिए अपने गानों को, और बिल्कुल रिलैक्स कीजिए अपने दिल को और दिमाग को, क्योंकि पूरे दिन आपने बहुत काम किया है। साथ में हमारे जुड़े हुए हैं इस समय सरिता जी कत्रबोन से, और ललित जी जो कि यूएस से साथ दे रहे हैं, कविता जी भी जुड़ी हुई हैं और साथ में एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो चलिए भाई सुनते हैं आप सबकी फरमाइश के गाने। तो यहाँ पर तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, पर अगर आपको लगता है कि कोई गाना ऐसा है जिसमें आप थिरक सकते हैं तो ज़रूर थिरकिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई सैड सॉन्ग है तो उसको दिल से इंजॉय कीजिए, और अगर कोई मस्ती वाला गाना है तो क्यों ना हो, मस्ती में हम झूमें नाचें, और क्या चाहिए।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:37 हो चुके हैं दोस्तों, और कहते हैं ना कि पुराने गीत जब चलते हैं तो वो एक खूबसूरत सा माहौल क्रिएट कर देते हैं, और ऐसे ये गाने होते हैं कि सभी की उम्र वाले लोगों को ये गाने पसंद होते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। क्या शायद कि जब बनाए गए होंगे तो बहुत ही दिल से बनाए होंगे, पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया होगा, और जब उसके ऊपर एक एक करके कहते हैं ना कि जब ट्यून बनती है, धुनें बनती हैं, तो बहुत ही लोग बहुत दिल से जुड़ जाते थे उस समय, और ये गाने तभी हमें आज तक बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, या कह सकते हैं बहुत ही हमारे दिल के करीब होते हैं। तो चलिए, हमारे साथ चाचा महीन जुड़े हुए हैं, और आपके मैसेज के लिए और आपके प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं चाचा महीन, क्योंकि आप हमेशा बहुत ही प्यारा सा कॉल करते हैं और हमेशा हमारा दिल बहुत ही खुश होता है आपके कॉल से और मैसेज से। साथ में उमा जी क्यूपिप से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने कहा कि जो निका मोवई का जो गाना आपने चलाया था वो किसने कहा था, क्योंकि वो सुबह से उनके दिमाग में ये गाना चल रहा था और वो चाह रही थी कि कोई तो ये गाना बजा दे, और हमने देखी बजा दिया। तो उसके साथ में ही हमारे साथ जुड़ी हुई है रिश्ता, विनीता जी ग्लैन पार्क से, राधा जी हसमुख जी ग्लैन पार्क से, और वो भी पुराने गानों को पसंद करते हैं, और वो कह रहे हैं कि पुराने गाने जब चलते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि जो लोग इस समय ड्राइविंग कर रहे हैं तो आराम से चलिए, आराम से घर पहुँचिए, कोई जल्दी नहीं है, और जो इस समय खाना बना रहे हैं एंजॉय कीजिए अपना खाना और गाने सुनिए।

जितनी बड़ी आप बटरिंग कर रहे हो ना, कई जनों के मैसेजेस आए कि आपने हमारी पसंद का गाना चलाया तो हम आपको चाय पिलाएंगे, कोई कहता है हम आपको गातो बीमा खिलाएंगे। तो आप सबका थैंक यू इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। सच में हम लोग बहुत ही खुश होते हैं जब भी आपके मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं। हमारा दिल करता है आपके मैसेजेस पढ़ना और आपके गाने, आपकी फरमाइश के गाने चलाना। तो चलिए भाई, एक हमारे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा नाम मत पढ़िएगा, बट मैंने जिसको ये मैसेज देना है और जिसके लिए गाना चलवाना है उसको अपने आप ये गाना पता चल जाएगा कि किसको सुनाना है। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला गाना जिसके नाम भी दिया है आपने। तो मैं कहती हूँ आप तक के मैसेज ज़रूर पहुँचे और प्यार आपको बहुत बहुत मिले।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:53 हो चुके हैं दोस्तों, और अब है जाने का वक्त। और इस घंटे आपने अगर थोड़ा सा आराम लिया हो और थोड़े से अपने गाने सुने हो तो मुझे अच्छा लगा होगा। आपके मैसेजेस और आपकी पसंद सभी की बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, पर फिर भी हम सबके गाने नहीं चला पाते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक घंटा होता है। पर फिर भी हम आपको इतना ही कहेंगे कि अगले हफ्ते आप अपनी पूरी लिस्ट बना के रखिएगा, और जब आप लिस्ट बना के रखेंगे तो फिर हम चला पाएंगे आपके एक एक करके गाने। या आखिरी गाने जो दो हैं, बस एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आई थी साधना जी की, तो हम उनके लिए भी कहेंगे थैंक यू सो मच आपको और आपके पूरे परिवार के लिए ये गाने। तो पर ये इन्जॉय कीजिएगा, इसके बाद आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार। इन्जॉय कीजिए आपके दो लास्ट गाने आशा भोसले की आवाज़ में और लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत मूवी से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: उषा जी, आपके नाम

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल अमरीका और ईरान के बीच तय हुए शांति समझौते की एक प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। 60 दिनों के लिए प्रभावी ये होगा। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने की घोषणा के साथ जहां तेल की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका प्रभाव जल्दी खत्म होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप एल में कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 के स्कोर से हराया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वेसाई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों के साथ रात्रि भोज से ठीक पहले अमरीका और ईरान के बीच तय हुए शांति समझौते की एक प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि व्यावहारिक रूप से इस समझौते

0: होता। जापान पर हस्ताक्षर का अर्थ है होर्मुज, ज्ञापन पर हस्ताक्षर का अर्थ है होर्मुज जल मार्ग तुरक खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी हटा दी जाएगी। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वर्सायल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ रात्रि भोज से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तय एमओयू की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 14 बिंदुओं पर आधारित है। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा जो 30 दिनों के भीतर पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और इसके बाद इलाके से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा। ईरान ने 60 दिनों तक होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निःशुल्क और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का वादा किया है। तेहरान ने प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को घटाने तथा परमाणु हथियार विकसित न करने का भी आश्वासन दिया।
2: Reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
1: नेटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता की बहाली एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
3: The restoration of free passage through the Strait of Hormuz will be a massive step forward.
1: समझौते में ईरानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन की योजना भी शामिल है जो अमेरिका और उसके साझेदारों द्वारा समर्थित होगी, बशर्ते कि परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौता तय हो जाए। वाशिंगटन का कहना है कि ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति होगी। इस समझौते को अंततः संयुक्त राष्ट्र परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
0: मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन स्थिति के सामान्य पर लौटने में अभी महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉर्शन कंपनियों को फ्रेट लागत में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है जो प्रति कंटेनर $1,100 तक पहुंच गई है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: 1950 के वर्षों से खाद्य पदार्थों के सप्लायर आजलिस उन मॉरिशन कंपनियों में शामिल जिन्हें मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई के परिणामों का सीधा असर झेलना पड़ा है। आजलिस कंपनी लिमिटेड की CEO शारन आमदनी ने कहा, फॉरेस्ट के लिए फ्रेट में 35% की वृद्धि, भारत के लिए 40% की बढ़ोतरी, और चूंकि दुबई के लिए वहां बंदरगाह बंद है, हमें ओमान से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे में 100% पूरी तरह से बढ़ोतरी, लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं कि सभी स्तरों पर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज डॉलर बढ़ता जा रहा है। 70 वर्षों से स्थापित आजलिस ने दुनिया भर में सप्लायरों के लिए एक महत्वपूर्ण नेटवर्क कायम किया है। इस संबंध की बदौलत उसे कुछ लाभ भी हुए हैं। डॉक्टर शारन रामदनी ने आगे बताया, पहले तो हम सप्लायरों के साथ भारी समझौता बातचीत करते हैं, साथ में ये सप्लायर केवल सप्लायर ही नहीं है, सहयोगी भी हैं। हम उन्हें मना पाते हैं कि फ्रेट खर्च बांटने के लिए, साथ ही एवरेज कॉस्टिंग कर रहे हैं पुराने स्टॉक को लेकर, शुरुआत में खर्च के बोझ को संभालने के लिए ये पहले कदम है, लेकिन इसके साथ साथ बचाव कदमों के लिए भी वैश्विक प्रवृत्ति जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एवं जियोपॉलिटिकल है, ऐसे में संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं, भारी संख्या में सामान खरीद रहे हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके यही कोशिश कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा बढ़ने से रोक सकें। विश्व व्यवसाय के चलते कस्टम कई प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहा है। लड़ाई के कारण गतिविधि सेक्टर में काफ़ी अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं, फ्रेट काफ़ी बढ़ गया है और साथ में समुद्री परिवहन खर्च भी। कस्टम हाउस ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अफजल दिलबार्ड ने कहा,
5: Dans les frais maritimes, il y a un peak season aussi.
4: समुद्री फ्रेट में भी पीक सीजन है, लो सीजन भी है। कभी कभी $900 में कंटेनर मिल जाता था, $1,200 में भी पहले हम समझौता बातचीत कर पाते थे जब बल्क पर कर रहे थे। एक कंप्यूटर सिस्टम है, अतः या तो इसे ले लें या फिर छोड़ दें। हिंद महासागर के टापुओं को 2,700 से $3,800 20 फुट प्रति

0: कंटेनर के लिए। जब लड़ाई होती है तो जहाज के लिए, कर्मचारियों के लिए, सामानों के लिए इंश्योरेंस की मांग की जाती है। अब कुछ बीमा कंपनी ये तय करती हैं कि किन इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी बात, जहाज़ों को अपना मार्ग ही बदलना पड़ता है, मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता, ज़्यादा खर्च। 100 दिनों से अधिक समय की लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते से तेल के दाम में थोड़ी स्थिरता आई है, लेकिन लड़ाई से पहले वाली स्थिति के लौटने में कई महीने लग जाएंगे। अफजल दिलवार ने आगे बताया, देखते हैं कि कहीं लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ सब कुछ ठीक है। शुरुआत में ऐसा होता है, मामला इतना आसान नहीं है। ये वैश्विक मुद्दा है क्योंकि समुद्री कंपनियां केवल इन मार्गों पर काम नहीं करती हैं, अन्य मार्गों से भी गुजरती हैं, काम करती हैं। जब मांग ज्यादा है, जगह कम है, तब फ्रेट प्रभावित होता है। अगर युद्ध खत्म भी हुआ तो हमारे विचार से 3-4 या 5-6 महीने में समुद्री क्षेत्र में कुछ स्थिरता आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद से दुनिया भर में पेट्रोल के दाम में अस्थिरता आती रही है। पिछले सोमवार को ईरान के साथ तय औपचारिक समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पेट्रोल सप्लाई और ईंधन के दामों पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने सचेत किया है कि युद्ध विराम के लिए जरूरी शर्तें रखी जाती हैं, लेकिन मंडियों में संतुलन की तीव्र वापसी के लिए ये पर्याप्त नहीं है।
1: जल संकट के बीच कौवाश व्यवसाय के लिए नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। सरकार पानी के उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के वास्ते जरूरी कदम उठा रही है। वहीं इस क्षेत्र के संचालक ड्राई वाश और बारिश के पानी के उपयोग जैसे विकल्प अपनाते जा रहे हैं। सुनिए,
2: देश भर में कौवाश के लिए हर महीने 14,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी की खपत होती है। वर्तमान में इस सेक्टर में 257 कंपनियां संलग्न हैं। इनमें पूजा शिवदत्त भी शामिल हैं, जो अपॉइंटमेंट पर कौवाश सेवा प्रदान करती हैं। पानी की उपलब्धता से जुड़ी कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने एक वैकल्पिक समाधान अपनाया है, बारिश के पानी को इकट्ठा कर दैनिक कार्यों में उपयोग करना। CWA के बजाय बारिश के पानी का उपयोग करते हैं, भाप का भी उपयोग करते हैं। यदि बारिश न हो, पानी न मिले, तो भाप प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस पहल की बदौलत वो अपनी जलापूर्ति की निर्भरता को लगभग आधा कम करने में सफल रही हैं। बारिश के जमा पानी के लिए 20 लीटर गाड़ी पीछे उपयोग करते हैं। यदि भाप का उपयोग करें तो कम पानी, CWA के पानी के लिए गाड़ी पीछे 40 से 45 लीटर का उपयोग करते हैं। प्रयासों के बावजूद स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पिछले महीनों में कम वर्षा के कारण देश में जलापूर्ति पर दबाव बढ़ गया है, जिससे ये क्षेत्र।
1: अब खबर फीफा विश्व कप 2026 से जुड़ी है। ग्रुप एल में कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 के स्कोर से हराया। हैरी केन, जूड बेलिंगम और मार्कस राशफोर्ड ने इंग्लैंड के लिए गोल किए। और इस शुक्रवार शाम को 2026 विश्व कप में 4 मैचों के साथ एक और रोमांचक रात की उम्मीद। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत शुरुआत बरकरार रखने की कोशिश करेगा, जबकि मोरक्को स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का प्रयास करेगा। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुरत यकीम की टीम स्विस टीम अब हर हाल में वापसी करने के इरादे से उतरेगी, लेकिन उनके सामने होगी एक बेहद जिद्दी और मजबूत बोस्नियाई टीम। दोनों ही टीमें अपने पहले मैच में ड्रॉ खेलकर यहां पहुंची हैं, इसीलिए ग्रुप बी का यह मुकाबला दोनों के लिए करो या मरो जैसा हो गया है। अगर स्विस टीम को इस बार किसी बड़े उलटफेर या बड़ी गलती से बचना है तो उनके फॉरवर्ड को अटैक में अपनी धार और तेज करनी होगी। कनाडा के वैंकूवर शहर में सह मेजबान को होस्ट कनाडा की टीम अपनी घरेलू फैंस के सामने कतार के खिलाफ मैदान में उतरेगा। कतार ने अपने पिछले मैच में स्विट्जरलैंड को ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था, जबकि कनाडा भी बोस्निया के खिलाफ ड्रॉ खेलकर आया।

0: बनाया है। इस लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद स्ट्रैटेजिक बन चुका है। होम मैदान पर खेल रही कनाडा की टीम को आज फेवरेट माना जा रहा है। उन्हें मैच में शुरू से ही दबदबा बनाना होगा, तेज रफ्तार फुटबॉल खेलनी होगी और विपक्षी टीम के साइड एरिया को पूरा इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर कतर की नजरें मजबूत डिफेंस और तेज काउंटर अटैक पर टिकी होगी ताकि वो कनाडा की टीम के डिफेंस की कमजोरियों का फायदा उठा सके। आखिर में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला एक ऐतिहासिक मुकाबला है जिसकी गवाह वर्ल्ड कप के इतिहास की दो सबसे अनुभवी टीमें बनने जा रही हैं। ग्रुप ए का यह समीकरण बेहद कड़ा और दिलचस्प हो चुका है। दोनों ही टीमें अपने अपने पहले मुकाबले जीतकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मैदान में कदम रख रही हैं। मेक्सिको टीम को आज अपने फैंस के जबरदस्त सपोर्ट का फायदा मिलेगा। मैच की आक्रामक शुरुआत, हाई इंटेंसिटी गेम प्ले और रफ्तार को अचानक बदलने की काबिलियत ही आज मेक्सिको का सबसे बड़ा हथियार होगा, लेकिन उन्हें दक्षिण कोरिया जैसी बेहद अनुशासित और सेट टीम के खिलाफ फूंक फूंक कर खेलना होगा। दक्षिण कोरिया की टीम भी पिछला मैच जीतकर आ रही है और उनकी बेहतरीन टैक्टिक्स और टीम कॉम्बिनेशन आज मेक्सिको की असली परीक्षा लेगा।
1: विदेश खबरों में, यूरोप के अपने दौरे के अंतिम चरण में भारत के प्रधानमंत्री पेरिस में हैं। वे वहां लगने वाले वीवा टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। आज उन्होंने वहां के वरिष्ठ व्यवसायिकों और सीईओस के साथ बैठक लगाई। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
2: यूरोप के औपचारिक दौरे के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल पेरिस पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने एवियन में लगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था जहां भारत एक अतिथि देश की तरह आमंत्रित किया गया था। पेरिस में आज भारतीय प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ फ्रांसीसी व्यवसायियों, निवेशकों और कंपनी सीईओज के साथ बैठक लगाई। उन्होंने वरिष्ठ यूरोपीय कंपनी मिस्टल एआई के सीईओ ऑटर मेंच के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया, मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार तथा जिम्मेदार एआई प्रशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी जी ने फ्रांस के साथ आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने की भारतीय सरकार की कटिबद्धता जाहिर की। फ्रांस में बसे भारतीय डायस्पोरा के लोग मोदी जी के होटल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने लोगों से भेंट करके खुशी जताई और भारत तथा फ्रांस के बीच बेहतरीन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डायस्पोरा का आभार प्रकट किया। इस दौरे के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

अब चले जाते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे, हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाहरेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 और अधिकतम 24 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:44 पर, शाम को सूर्यास्त 5:38 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। रॉयरोड पिछितिविया में पैंसठ साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र अपादू जो बेबी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले 198 कैप्यूसिन स्ट्रीट को मॉडल रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे रॉयल रोड पिछितिविया से मोहा फ्यूनरल्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। पोंकुल विल सावान रोड नोवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंत सुकन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कुणाल कुमार सुकन के मकान पोंकुल विल सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजिन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM। माइकल लील सेमोटेमे 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती एंतामा दालिवादू पैदाशी नाम आचादू और जो सूर्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान माइकल लील सेमोते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेमोते बेलोम्ब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा यह विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तमाहे के ग्राहकों को विशेषकर जो लोग रहते हैं एवेन्यू कैपिटन एडीसी तमाहे तथा आसपास के रहने वालों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से कल शुक्रवार 19 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्लेंडे पपाय आर्य रविवेद सभा शाखा नंबर 18 शुक्रवार 19 जून को रात्रि के 7 से 8 बजे तक भारतेंदु इंस्टीट्यूट रॉयल रोड प्लेंडे पपाय में यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा मॉरिशस शुक्रवार 19 जून ख्वाब बुचिक यूनियन वेल आर्य समाज में 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

सादर प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। रेडियो मॉरिशस के सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में। आपका साथ देने आई है दीवीना और अगले कुछ क्षणों तक हम सब मिलकर भक्ति, श्रद्धा तथा प्रभु चिंतन के दिव्य वातावरण में प्रवेश करेंगे। दिन भर की थकान, चिंताओं तथा जिम्मेदारियों के बीच यदि कोई चीज मन को सच्ची शांति प्रदान करती है तो वह है ईश्वर का स्मरण। श्रोताओं, प्रभु का नाम वह अमृत है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देता है तथा जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ एक सुंदर भजन से करते हैं।

जहाँ श्रोताओं, जिसके हृदय में प्रभु का वास होता है उसके जीवन में निराशा कभी स्थायी नहीं रह सकती। ईश्वर पर विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे मार्गों में भी प्रकाश दिखा देती है। वैसे संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति तथा सफलता चाहता है ना, परंतु अक्सर हम इन्हें बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं। संत महात्माओं ने कहा है कि वास्तविक सुख हमारे भीतर है तथा उस तक पहुंचने का मार्ग प्रभु भक्ति से होकर गुजरता है। जब मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी प्रतीत होने लगती हैं।

रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम। इसमें आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, भक्ति वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य सब दरवाजे बंद पाता है, तब ईश्वर उसके लिए नया मार्ग खोल देता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, आशा तथा विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु हमारे कर्मों को देखते हैं, इसलिए सदैव सत्य, प्रेम, करुणा तथा सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। भगवान को बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं होती है श्रोताओं, उन्हें चाहिए केवल निर्मल मन तथा सच्ची श्रद्धा।

जहाँ श्रोताओं प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय की सच्चाई से स्वीकार होती है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा का निवास होता है। वैसे जीवन में धन पद तथा प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु मन की शांति के बिना सब अधूरा लगता है। भक्ति हमें यही शांति प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ क्षण ईश्वर के लिए निकालें, सुबह या शाम कुछ पल प्रभु का नाम जपें। यह छोटी सी साधना जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर भी उसे कभी नहीं भूलते। विश्वास तथा धैर्य, ये दो ऐसे साथी हैं जो हर कठिन यात्रा को सरल बना देते हैं।

प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपने साथ दिया, हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। विदा लेने का समय निकट आ गया है। आइए एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रेम, सेवा, विनम्रता तथा प्रभु स्मरण को स्थान देंगे। स्मरण रखिए, सुख में ईश्वर को मत भूलिए तथा दुख में विश्वास मत खोइए। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना ही सच्ची भक्ति है। वैसे ईश्वर का नाम वह नौका है जो जीवन रूपी सागर को पार कराने में सहायता करती है और शक्ति देती है। मन मंदिर को स्वच्छ रखिए, क्योंकि वही प्रभु का निवास होता है। इसी मंगल कामना के साथ कि प्रभु की कृपा आप तथा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हम आपसे अनुमति चाहेंगे। सुनते रहिए रेडियो मॉरिशस और जुड़े रहिए भक्ति, विश्वास तथा सकारात्मकता के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।

पैदा करें, सब्र, तक्वा और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हम सब को सही अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है, आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all
3: NBC
2: night.
3: NBC TV right programs ki jhalkiyan.
4: Ye mere dehe ka ghar hai. Isko mujhse koi nahi chhin sakta. Koi nahi chhin sakta isko mujhse.
5: Babuji chale gaye. Ye ghar bhi chala gaya. Aur ab tum bhi ja rahi ho.
4: Kaka apne ghar ko chhod ke jaane ka kiska dil karta hai. Lekin jab ye ghar hi nahi raha to.
6: Aap jo mere neel na hote.
7: रविवार 21 जून को म्यूजिक डे के उपलक्ष्य में NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म गीत 1992 की ये मूवी दिव्या भारती और अविनाश वधावन पर फिल्माई गई गीत

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: सर ये गाड़ी आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते सर।
2: ओए कूल इट ब्रदर है।
1: अरे सुनिए,
3: हाउडी सर,
2: सब भला चंगा है ना मैम?
3: अजी सब चंगा ही चंगा है सर। मीट सैम, हिंदुस्तान पहला जलंधरी काउबॉय।
2: हाउडी।
4: जब से ये आपकी गाड़ी चलाते हैं आपको घोड़े पे बैठने की ख्वाहिश तो नहीं होती
2: होगी? कैसे जी, वैन पंजाबी ड्राइव से गड्डी फ्लाई।
0: रविवार 21 जून को MBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जिंदगी रॉक्स। 1996 की ये मूवी सुष्मिता सेन और शाइनी आहूजा पर फिल्माई गई जिंदगी रॉक्स।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 18 जून 2026 के ये बखत ठीक 9:02 होलबा और हम किरण आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत करत है। आप सब कोई के हमर सप्रेम नमस्ते। आशा करत है कि आज के दिन हमेशा की तरह आपके बहुत अच्छा से बीतल। और जनते ही है जा कि आजकल वर्ल्ड कप के बुखार बहुत तेज़ से चढ़ ले जाता सब कोई के। हर घर में वर्ल्ड कप के जो वातावरण बा उ छागल बा। लेकिन साथ साथ जे लोग भोजपुरी तड़का के दीवाना हवन जा उ लोग कैसे से कहन जा हमने के साथ छोड़े। तो चला आपके ही मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का एक बार फिर सजा के आल है जा आपके मनपसंद कलाकार संतोष महादेव के आवाज़ में ई पहला गीत।

रात के 9:07 होल बा और आप लोग भारी संख्या में हमेशा के तरह साथ देवा था वजह ई जान के बहुत खुशी होवा था। हमी के जोन फोन आवेला अक्सर घर से आवेला, जे लोग घरे सुनत हवन जा, बीमार हवन जा, दर्द में हवन जा, ऐसन फोन अक्सर आवेला और ई जान के हमनी के खुशी होवेला कि आप लोग के ई जोन दुख के घड़ी बा एकर में आपके थोड़ा राहत मिलेला ई प्रोग्राम सुन के। और ई बखत हमनी के फोन करलन आत्माराम जी बेलिया से, जिनकर तबीयत आप में से बहुत की तरह उतना ठीक नहीं रहेला, लेकिन आपके मन, आपके जोन दिल बा ओके खुशी मिलेला जब आप लोग अच्छा अच्छा गीत अपनों के नाम करेला जा। और ई भावना के साथ आत्माराम जी अपन चार गो बहिन जिनकर नाम अक्सर चलते रहेला, सुदेवी, ललिता, प्रभावती और छोटी के नाम ये अगला गीत करत हवन स्वर्गीय ज्ञान महिपतलाल के आवाज़।

में, और ये गीत के शौकीन हवन बाशेरी के धनी जी भी। तो चला आप दोनों जना के मनपसंद गीत बदरिया घिर घिराए, बहुत सुंदर गीत आप सब कोई के नाम।

ज्ञान मोहिपतला के आवाज के बाद जन अगला गीत चली ये गीत है हमने के देश के एगो जानल नाम बहार गौरी के आवाज में और इनकर आवाज में काफी सुंदर सुंदर भोजपुरी गीत बा लेकिन सबसे मशहूर जन हमने के प्रोग्राम में बा वो है शादी के गीत शादी से जुड़ल गीत मामा पापा और अगवा के लेके ये गीत के फरमाइश करत हवन विजय बेनी प्रसाद और आप सब बेनी प्रसाद परिवार के नाम सब दुली परिवार के नाम मोहताबा से और अपन दोस्त शास्त्री बनुमाली के नाम ये गीत करत हवा उधर हमने के सुनत हवन अमृता गणेश पितों से आप सोनिया और परी और पूरा परिवार के नाम ये गीत सुने चाहत हवा और विजय बेनी प्रसाद जी बोलत हवन कि ई बखत ऊ काम में हवन और काम में समय बितावे के रात के बखत ई प्रोग्राम बहुत बढ़िया है ई प्रोग्राम के आपके इंतज़ार रहेला तो ई जान के खुशी होवेला कि हमने के भी इंतज़ार रहेला जैसे कि आप लोग से बात करे के आप लोग खातिर ई सब गीत चलावे के इंतज़ार हम के रहेला तो चला प्यार के साथ आप सब कोई के नाम ई अगला गीत मामा और पापा और अगवा के लेके और ई गीत के बाद बहुत जल्द देखब जाके एक दो गो शादी के गीत भी चली कहे कि अगवा के काम जैसे शुरू होवेला तो चाहे शादी के भी तैयारी शुरू करे के

0: अभी घड़ी पर एगो बहुत खूबसूरत जो नंबर बा उ लौकता और वह 21:21 मतलब कि 9:21 और आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग काम में से आराम करते हुए लेटे लेटे दर्द में खुशी में पूजा पाठ से लौटते हुए या फिर उधर फुटबॉल खेलता तो हुआ से निकल के आके फ़ोन करत हो जा और ई प्यार खातिर ई साथ खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। हमने के भी बुझाए कि ई प्रोग्राम चलता तो आप जैसन वफादार श्रोता ई महफिल में बैठल हो जा। और अगला जो गीत बा चीनी के खेतवा सुनीता ननकू के आवाज़ में ई गीत सुने चाहत हवन शोभा जी। शोभा जी ये गीत बोलत हवन की खास तौर पर हमार नाम करत हवन और बोलत हवन जे गीत चलावेला चाहे उनकर नाम सबसे आगे लेवे के बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी। और आप अपन सब सखी सहेली के नाम और साथ में जितना कोई भी ई बखत ई प्रोग्राम के साथ जुड़ल हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत करत हवन। और आज रात के देखत है जा कि कहीं कहीं हल्का बारिश होता तो कहीं कहीं चाँद बहुत सुंदर रूप से थोड़ा घड़ी आगे खिलल रहल सुंदर चांद नवा चांद और उधर तिरंगन भी बहुत सुंदर रूप से झलकता सुंदर आसमान में और तापमान थोड़ा घट गल बा थोड़ा जस्ते ठंडा करता आज के रात। और ऐसा तापमान जब बहुत गर्मी के बाद आवेला तो सच में बहुत मज़ा आवेला। तो चला इस सुहाना रात ई सुहाना जो ठंडा ठंडा हवा चलता और सुंदर सुंदर गीत चलता और आप जैसन श्रोता के संगे जो महफिल सजता संगे ई सब के मिलावब जा तो एकर से बढ़िया और का रही।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2

0: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
3: और कहाँ जाऊँगा? यही सजा मुकर्र की हमने अपने आप के लिए.
4: क्यों देते हो अपने आप को ये सजा?
3: क्योंकि रोज बैठी है इस दिल में जज्बात की.
5: तुम दोषी हो.

शनिवार 20 जून को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे म्यूजिक डे के ईव पर आप देख पाएंगे हिंदी फीचर फिल्म देवदास। 2002 की ये मूवी शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माई गई देवदास।

नाउ किरण संगे। रात के 9 बजके आधा होल बा और जे ई बखत आप बीच सीमा में चलत हवा, गाड़ी चलावत हवा या फिर सफर में निकलल हवा और बीच सीमा में आपके पुलिस लॉ की तो आपके ई बात के ख्याल चाहिए रखे के कि घबराए के कोई बात नहीं बा, कहे कि आप सब कुछ ठीक ठाक गाड़ी के जितना भी नियम बा कर पालन करते हुए गाड़ी में सफ़र करत हवा। आजकल दिखत है जा कि ढेर कुछ सुने के मिलता सड़क पर, तो पूरा सावधानी के साथ आगे निकला और रतन हरी के ई गीत नहीं भूलैया।

रात के 9:35 होलबा और आप सुनत हवा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जो 9 बजे से शुरू होलबा और रात के 11 बजे तक चलते रही आपके ही मनपसंद प्रोग्राम आपके ही मनपसंद चैनल रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर और आप सब कोई के फरमाइश एक के बाद एक पूरा हो ले जाता जितना भी गीत चलता सब आप ही लोग के फरमाइश पर आप ही लोग के पसंद पर और हमने के अपन मॉरिशन कलाकार लोग के आवाज़ में चलता अगला जो गीत चली किशोर खिमिया के आवाज़ में देश के अगला जानल मानल कलाकार और इनकर जो सबसे मशहूर गीत आजकल चलता जलसा लालबा ये गीत के फरमाइश ढेर कोई कर ले हवन जा और ख़ास तौर पर ये फरमाइश आवता शीला जी के ओर से आप ये गीत अपन पतिदेव के साथ सुने चाहत हवा सुरेन और आप लोग इन दिनों छुट्टी पर हवा जा मॉरिशस में और अपन पूरा परिवार से मिलाप के बखत आलबा मिलते हवा जा और मिले के बा और ऐसन में जब मॉरिशस आईबा विदेश से ता जलसा ही के बखत रहेला तो चला शीला के पसंद पर ये गीत उनकर सब लड़का लोग के नाम सब नाती पोता के नाम बेटी दामाद के नाम और पूरा परिवार के नाम

0: संगे।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: कमला जी आप चली क्यों आई? क्या बात है?
5: अमृत जी, गिरती हुई दीवार को सहारा मत दीजिए। इस समागम का कभी किसी ने साथ नहीं दिया। पति मझदार में छोड़कर चले गए, औलाद ने तो डुबो ही दिया, और आज इस शरीर भी साथ छोड़ना चाहता है।
6: दुनिया में कितना हम हैं।
0: शुक्रवार 19 जून को

आशीष रामफल के आवाज़ में बहुत ही मॉडर्न तरीका से बनावल, बहुत ही सुंदर ढंग से सजावल जौन गीत चलल। अब ओकर बाद एगो पुराना झूमर सुनब जा, एगो एवरग्रीन आवाज़ सत्यम गणपत के आवाज़ जौन अभी गूंजता। सत्यम गणपत जे एगो गिथारिन हवन और साथ में एगो बहुत ही अच्छा कलाकार हवन, तो चला इनका आवाज़ में एगो पुराना लेकिन बहुत ही मशहूर झूमर सुनी जा।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. MBC TV programs की झलकियाँ।
3: ये मेरे डैडी का घर है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता इसको मुझसे।
4: बाबूजी चले गए, ये घर भी चला गया, और अब तुम भी जा रही हो।
3: काका अपने घर को छोड़ के जाने का किसका दिल करता है, लेकिन जब ये घर ही नहीं रहा तो।
5: आप जो मेरे मिल न होते।
2: रविवार 21 जून को म्यूजिक डे के उपलक्ष्य में एनबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म गीत, 1992 की ये मूवी दिव्या भारती और अविनाश वधावन पर फिल्माई गई गीत।

0: सीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक बार ये हमारा गाना सुनेंगे ना तो एक और सूप ऑर्डर करेंगे।
2: देखो उस गाने के बारे में सोचो जो तुम्हें कल गाना है।
3: जान लोगी लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर करना।
2: रक्षा आजकल तो सब इन्हीं के गाने सुन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था कि हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है।
4: ऑटोग्राफ? ओह माय गॉड,
5: किस्मत वाले हो यार, बीवी हो तो ऐसे।
1: हर आदमी पहली बार कहीं ना कहीं शुरुआत करता है, किसी न किसी की मदद लेता है।
2: अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद।
0: शनिवार 20 जून को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल विल प्यार व्यार 2002 की ये मूवी आर माधवन और जिमी शेरगिल पर फिल्माई गई दिल विल प्यार व्यार।

देखते देखते एक घंटा पूरा हो गया और अभी 10:04 हो बा। और अगला गीत जन चली वो ललिता जी के फरमाइश पर, और ललिता जी सुने चाहत हवन विनोद सिवदत्त के आवाज़ में भोजपुरी भाषा बाप दादा के बोली हा। और ये गीत आप अपन दीदी छोटी प्रभावती आत्माराम भैया, हरीश भैया, सुखलाल मौसी, माला राम जावन और अपन ननद जे ई बखत कनाडा में हवन कमला गुरबिन के नाम करत हवा। और ई गीत जितना कोई खुशी रहला जा, कहे कि विनोद सिवदत्त के आवाज़ के फरमाइश ऐते रहला अक्सर, तो आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

फुलवा फुले आधी रात गलवा के कर डालब। जब फूल की बात चलता तो हुआ पर हार के भी बात चलता, कहे कि आजकल शादी ब्याह के मौसम बा और ई वक्त ढेर कोई गीत गवाए से लौटत हवन जा, ढेर कोई बोलत हवन जा कि ई सप्ताहांत के बरियात आई होला बा। और ऐसन एगो फरमाइश आल भा हमने के पॉपलेमुस से नहीं बल्कि फोंजीसाक से उमा जी बोलत हवन कि मोहन परिवार में दिमास के बेटी के बरियात आए के बा। और बेटी के जब बरियात आए तो चाहिए बरियात के ही एगो बढ़िया गीत सुनाए के। और आप सुने चाहत हवा अवध से अले बरतिया। और उमा जी, मोहन परिवार के हमने के ओर से शादी के बहुत बहुत शुभकामना। शादी बहुत अच्छा से बीती, सब परिवार हमेशा खुश रही। और सबसे जन ज़रूरी बात बा, जो नवा दंपति बा उ लोग के शादीशुदा जीवन हमेशा सुख से भरा रही। और शारदा सिन्हा के आवाज़ में आप ये गीत सुने चाहता हुआ। जब शारदा सिन्हा के आवाज़ के बात चला था तो अभी अभी बाशेगी से धनी जी भी फ़ोन कर लन और उबड़ा थवन कि अभी अभी फुटबॉल समाप्त हो गल और स्कोर जाने के उत्सुकता हमके भी रहल। और बोला था वन कि ये जो मैच चलल अभी चेकिया और साउथ अफ्रीका के बीच, ये मैच ड्रॉ रहल। और जैसे मैच फिनी हो तो धनी जी फ़ोन कर लन और देखा थे जाके अब ढेर कोई फ़ोन करे लगलन जा, ख़ास तौर पर पुरुष लोग, कहे कि हमने के चाची दादी लोग जस्ती उ लोग रेडियो संगे रह लन जा। तो धनी जी, आपके नाम भी ये अगला गीत शारदा सिन्हा के आवाज़ में आप एगो गीत सुने चाहता हुआ, बहुत ही सुंदर पारंपरिक गीत आप सब कोई के नाम।

ई शादी के गीत आप सबको के नाम जेकर घर परिवार में शादी के जोन समा बा, शादी के जोन वातावरण बा उ चलता, और शादी के जोन बंधन में जोन दुगो परिवार बंधे जाता, दोनों परिवार के बहुत बहुत शुभकामना। दोनों जोन दंपत्ति बा दुल्हा दुल्हन, अभी दुल्हा दुल्हन हवा जा, लेकिन बाद में ई जोन जीवन चाहे निभावे के ओकर में समझ बूझ और आदर सम्मान के बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही, और एक साथ चाहे संगे चले के और ई जोन साथ रही एकर में कोनो दरार नहीं पड़ी, ई बात के हमेशा ख्याल रखे के और हमेशा एक दूसरे के सहयोग देवे के, और सबसे बड़ा बात चाहे एक जना के ई दोनों दंपत्ति में से तय करे के ई दोनों में से एक जना के चाहे देवे के भावना रखे के। हमने खाली चाहिला जा पाए के चाहिला जा, लेकिन दोनों जना जे मांगी त देवे होला त चाहे एक जना रहे के, त अभी से तय कर ला कि हम सब कुछ देवब ई संबंध में, और ऐसन भावना जब रखबा त उ चाहे कोनो भी संकट आए त आपके जारी ई फर्ज रही कि आप देबा त संकट नहीं आए ऐसन में। अब अगला जोन गीत चली सोना नोयान के आवाज़ में, ई गीत सुने चाहत हवन ई बखत जे हमने के सुनत हवन भाई अबू। भाई अबू हमेशा के तरह हमने के साथ जुड़ल रहेलन, और भाई अबू अभी अभी उ भी फुटबॉल देख के आवत हवन, जैसे बोल दी जोन हमनी के घर के पुरुष लोग हवन जा जोन मर्द लोग हवन जा वो लोग जस्ती खास तौर पर आगे के समय के जोन चचा दादा लोग हवन जा वो लोग फुटबॉल के साथ जुड़ल रहेलन जा, जबकि हमनी के माँ चाची दादी लोग वो लोग जस्ती रेडियो के साथ। लेकिन आज के समय में वो छोकरा छोकरी औरत मर्द सब कोई फुटबॉल के शौकीन हवन जा, और ऐसन में भाई अबू बोलत हवन कि देखते देखते वो फसगे हो गई रन टेलीविजन के सामने बैठल बैठल, लेकिन फुटबॉल के ई जोन बुखार बा वो चाहे तोहर देह में कितना दर्द हुई बैठ के वो आपके विवश कर देवेरा। तो खुशी के बात बा कि जैसे फुटबॉल फिनी हुआ था आप लोग हमने के याद करत हवा जा, फ़ोन करत हवा जा, और

0: अगला गीत खाले पीले ई अबू अफेज अयज जहीरा और भाई अबू के एगो बहुत ही खास दोस्त हवन जिनकर नाम है आपी और उनकर बीवी के नाम और ख़ास तौर पर आज के रात भाई अबू जकीबा के नाम ये गीत करत हवन जकीबा जे उनकर भतीजी हवन और उनकरा वो बोलत हवन कि मामू अबू के दुआ उनकर पर हमेशा रही अल्लाह हमेशा उनकरा शिफा दियन और हमके ऊ समझेलन कि एकर मतलब भी का है त आपके दुआ आपके प्यार आपके परिवार आपके सगे संबंधी संगे हमेशा भर चलते रही भाई अबू ऐसन हमार शुभकामना बा त चला ई सुंदर गीत सब कोई के नाम जे सुना नोयान के बहुत बड़ा फैन हवा जा
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: Zindagi ke anmol lamhe Radio Mauritius ke saath

चिराय बोले चुक चुक ईगीत के फरमाइश कर ले हवन सुयाक से श्रीमती जी। और श्रीमती जी अपन तीन गो बेटा तीन गो पतो अपन सब नाती पोता के नाम ईगीत चलावे चाहत हवन। और उधर मोताइलोंग से गीता जी फोन करलन बातचीत करे खातिर और बोला था वन कि बातचीत जितना गीत जरूरी है उतना आवाज़ में रस और मधुरता भी जरूरी है। तो गीता जी आपके मधुर आवाज़ आपके मधुर बात खातिर बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

रात के 10:32 होगल बा, देखते देखते 1 घंटा आधा होगल, और आधा से कमती समय, आधा घंटा से कमती समय हमने के संगे बा अगला जन गीत चली। अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से फ़ोन करके गीत के फरमाइश करलन, और अनीता जी बोला था उनकी बहुत ठंडा करता, और जब ठंडा करेला तो चाहेला हाली से मरमिट में गरम पानी चढ़ावे के, तो मरमिट में गरम पानी गीत संतोष महादेव के आवाज़ में अनीता जी आप सब कोई के नाम करत हवन और हमार नाम भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, संतोष महादेव के ये सुंदर गीत आप सब कोई के नाम।

बखत हमने के व्हाट्सएप मैसेज भेजा था वन कैथोबोन से सरिता जी, और आपके फरमाइश बा नीरज गुप्त मधु के आवाज में हेले साबुन हेले लुंडा और ई गीत पर भावती दादी के नाम भी जे अभी फोन करलन। सोचा ई बखत भी हमने के दादी लोग हमने के दादा लोग सुनत हवन जा, काहे कि जब नींद नहीं लगेला तो चाहेला ध्यान कहूँ पर लगावे के, और ध्यान जब अपन मनपसंद गीत पर लगेबा तो उ सुनते सुनते नींद भी चलावेला। तो चला नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में ये अगला गीत खास तौर पर कैथोबोन के सरिता जी के नाम और परभावती दादी के नाम।

0: देखते देखते हमने के समय चला हुआ था और लगभग 15 मिनट में 11 बज जाए और हमने के साथ हिये तक रहल 11 बजे तक बा और आपके मनपसंद गीत चला था अभी और तकब जा बोले 4 गो गीत चली आपके पसंद के गीत और तब तक हमके आज्ञा दा हमने के मुलाकात फिर से हुई काल फजीर के हमेशा की तरह हमारी धरोहर में और जे काल नहीं ता फिर से यही प्रोग्राम में हमने भेंट आप जा आवत बिफे के त आवत बिफे के हमके इंतज़ार रही आप लोग से फिर से बात करे के जितना फ़ोन कॉल्स आज नहीं सकली सले हुए वो सब फ़ोन कॉल फिर से लेवा बिफे के त आपके जितना पसंद रहल सबके पूरा करे के पूरा कोशिश रहल अभी का तिर हमके आज्ञा दा धन्यवाद शुभ रात्रि नमस्ते
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
2: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
3: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your 190 station.
5: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
9: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो रहा है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल से महसूस किए जाते थे और दिल में बसा लिए जाते थे। तो अगले किस एक घंटे की सफर में आप बस हमारा साथ देते रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में गिनिशा के साथ।

वैसे मानो या ना मानो, हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है, और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं और दिल में बस जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफ़र में हम आपका साथ देंगे। आप आनंद लेते रहे और साथ देते रहे और गुनगुनाते रहे हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हैं या हो सकता है किचन में अभी भी कुछ काम चल रहे हैं या सफर पे हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना जो खुल चुके हैं आपके और हमारे बीच में। ये है सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए जी, अगला नगमा कुछ ऐसे हैं जो सीधे दिल को छू जाएंगे और आपको खींच के लेके जाएंगे आपकी उन खूबसूरत यादों की तरफ जो आपने छुपा के रखा है।

दोस्तों, हमेशा याद रखना कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी जिंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल में, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है। और फिलहाल के लिए सुकून भरे गीत, खासकर हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

मानो या ना मानो, लेकिन वो ज़माना ही कुछ और था मेरी जान, वो दौर ही कुछ और था। पुराने बॉलीवुड के गाने, हाँ जी, ऐसा लगता था कि उनमें इतना प्यार बसा हुआ था कि फुट फुट के निकलता है जब भी हम उन गानों को सुनते थे। और बात यही है कि आज भी जब वो गाने हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में, तो ऐसा लगता है कि हम दोबारा मजबूर हो जाते हैं उसी वक्त में लौट जाने के लिए। बिल्कुल जी, प्यार भरे नगमे प्यार से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। तो बस आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी यादों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे समझे।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए यह वक्त हो गया है गिनिशा को गुड बाय बोलने का। हम फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल वाले खूबसूरत शो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: आई लाइक इट।

0: झगड़ने की क्या बात है
1: यार? पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: है। तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।